मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

0: प्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीज के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वृंदा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ऐसा कहते हैं, सभी मनुष्यों को एक दूसरे को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। जब मन पाप से अपवित्र हो जाए, तब ईश्वर का नाम लेते रहने से वह निर्मल हो जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हवेली संगीत से।

स्वीकारो मेरे प्रणाम, हम तो यही कहेंगे। ना तो अरदास है कोई, अब ना ही कोई अर्जी है। तेरे चरणों में सिर है मेरा, आगे तेरी मर्जी है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और लीजिए श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं आपको जानकारी देते हैं आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 10:55 पर आप सुन पाएंगे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जनता को संदेश। उसके बाद इस संदेश का संस्कृत अनुवाद भी आप सुन पाएंगे। शाम 7 बजे का समय रहेगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

उदयपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस तरह से होंगे। अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:40 पर आप सुन पाएंगे

श्री रामचरित मानस गान पाठ। किसान भाइयों के लिए हम खेती में आज कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 6:50 पर। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम कृषि जगत का। हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम बगिया के फूल दोपहर 12:00।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे कुछ सदाबहार नगमे, पुराने फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे। फिल्म संगीत होगा दोपहर 12:30 पर, 1:45 पर और शाम 6:05 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:45 पर और 9:30 पर। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का समय रहेगा सुबह 8:30 पर।

बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत दोपहर 1:05 पर, और हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी रोजाना की तरह शाम 5:00।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान पाठ।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

श्री रामचरित मानस कान पाठ अभी आपने सुना। संगीत निर्देशक सतीश भाटिया और प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। हमारे किसान भाई अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाई, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम में टेम भी और मो आयो आपने घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो आज जो अपनी जानकारी देवा खेती बाड़ी रो काम जो अपनी करी रहा हाँ, जून को महीनों चली रहो हर आने महीना रहा बीतता दिखाई जो अपने खेती बाड़ी को काम करा। तो वन में आप ही देखो चारा फसला को काम खास तौर पे करना चाहवा। तो वन के बारे में जानकारी देवा तो बात यह है कि पशुपालन अपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पशुपालन जो है लाभदायक जदि वेमदी सीधो संबंध अपने खेती बाड़ी और पशुपालन को पोषण जो है वन के बारे में वही सके। डेयरी क्षेत्र में भी कुछ खर्च जो है लगभग 60-70% तक हिस्सों जो है पशु आहार संबंधी व्यय करे। और यदि किसान भाई जो अपने क्षेत्र में इन्हें पौष्टिक हरों चारों जो है वो उगावे तो केवल अपना दूध उत्पादन ही की नहीं बढ़ोतरी वे बल्कि देखो लागत में भी कमी आवे और पशुओं को स्वास्थ्य भी जो है वो बढ़िया रहे वैसा। तो अब खेती बाड़ी में देखो अपना चारा फसला है वन की जानकारी देवा कि चारा फसल जो है वन को महत्व कई है। लागत

मैं कमी री बात करूं तो देखो बाजार मैंने महंगा चारा खरीदवा व निर्भरता कम यहाँ करे। दूध उत्पादन की बात करूं तो हरा चारा जो है अपना विटामिन खनिज और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में वेवे तो दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी वेवे। पशु स्वास्थ्य की बात करें तो हरा चारा जो है मौजूद वन में कैरोटीन जो वहाँ कर है वन में विटामिन ए को स्रोत जो प्रमुख रूपों में वहाँ करे जो अपना पशुओं में प्रजनन क्षमता बढ़ावे रोग लड़वा की जो क्षमता इन्हें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के वहाँ वन में भी सुधार करे। प्रमुख चारा फसल कई कृषि कृषि है देखो अपना खरीफ के फसल वे जून जुलाई रे महीने जन में देखो ज्वार है मक्का है बाजरा है लोबिया है ग्वार है और नेपियर घास व्या करे। और रबी रे महीने में जो वे अक्टूबर नवंबर महीना में वे वह बरसीम जई रिजगो और देखो हरूरी खेती जो व्या करे। और जायद रे महीने मतलब मार्च अप्रैल रे महीने बाजरो ज्वार और मक्का री खेती व्या करे। तो आप ही देखो कि बड़ो खरीफ री फसल महीना जून जुलाई की टेम चल रही है तो अपना ज्वार मक्का बाजरा लोबिया ग्वार और नेपियर घास की आप खेती करना चाहवा। प्रमुख चारा फसल में खेती में तकनीक की बात करना तो देखो ज्वार की बात करना सबों पहले तो देखो इन्हें चार जो चारा फसला जो है वन को राजा क्यों जावे वन में देखो बुवाई जो है जून का अंतिम सप्ताह महीने या जुलाई के मध्य तक में की जावे। विधि की बात करें तो बीज में कतारों में देखो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी वेणी चावे। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्वार रे महीने दूरीन मतलब प्रूसिट एसिड नाम को जो नामक जो तत्व यहाँ करे जो छोटी अवस्था में ही पशुआ रे महीने जहरीलो भी वही सके। तो आनी वास्ते कई कटाई अपना समय में पहली जो करा पी फूल आवा की अवस्था रे महीने में करनी चाहवा अपन है। बरसीम भी बात करना तो देखो कि यह जो है सर्दी की टाइम की जो फसल व्या करे। नेपियर घास जो है वह अपना देखो कि बहुवर्षीय फसल इन्हें कहो जावे। एक बार लगाव के बाद में 3-4 साल तक जो अन्य अपनी चारा के रूप में ले सका। अणि को रोपण करना चाहवा तो देखो जड़ा जो है वन में अपने तना की कलम है वणी के हिसाबों आप लगाई सका। फायदा यो है कि प्रति एक एकड़ जो अपना अन्य फसला की तुलना रे महीने में अणिक में जो बायोमास मतलब हरो चारो जो है वत्तो मिले अपन है। और पोषण प्रबंधन री बात करें तो खाद की बात देखो कि अपना बुआई पहले अपना 10 से 15 टन अच्छी तरह सड़ी की गोबर री खाद प्रति हेक्टर खेत रे महीने मिलावना चाहवा। नाइट्रोजन री बात करें तो चारा फसला रे महीने बढ़ोतरी रे वास्ते अपने नाइट्रोजन सबों जरूरी है। और ज्वार और मक्का रे महीने देखो नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार मतलब आधी बुआई पे या पचे आधी जो है अपने पहली सिंचाई के बाद में अपने देना चाहवा। फास्फोरस री बात करें तो देखो जड़ा रे महीने विकास के वास्ते डीएपी को खाद को इस्तेमाल आप करना चाहवा। जल प्रबंधन री बात करें तो चारा फसला में नमी को अभाव उपज व्यवहार की स्थिति में जो है यानी कि उपज प्रभावित होवे और बरसात के दिनों में देखो जल निकासी की व्यवस्था अपने वेणी जरूरी है। तो गर्मी का मौसम में देखो 7 से 10 दिन का अंतराल में जो है पाना तापी करना चाहवा और वर्कारी टाइम पर अपना जल निकासी को प्रबंधन करना है। तो अन्य तरह आप चारा फसला को प्रबंधन आप ही कर सका। चारा संरक्षण की बात करें तो पूरा साल में देखो चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने वास्ते संरक्षण जरूरी है। अब देखो साइलेज में व्याकरण में देखो मक्का या ज्वार का जो भी गड्ढा है वन में दबाई जो किण्विक किया जावे और यो देखो हरो चारो उपलब्ध करवाने वास्ते नो सब अच्छो विकल्प व्या करे। हेरी बात करा तो अणमें देखो चारा में सुखाई जो अपना भंडारण कियो जावे जणियों कही है कि बरसीम या रजको है वरना भी सुखाई सका। और पशुपालक भाई जो है वहाँ मैं देखो कि पशुपालक के वास्ते उन्नत सुझाव की बात करा तो देखो मिश्रित खेती आप ही हमेशा कही करा कि अनाज वाली जो चारा फसला है जिनमें ज्वार आप ही वेच सके अणमें देखो दलहनी फसल है लोबिया या पचे ग्वार अणिका लारे आप ही मिलाइन बुआई कर सका। और चारा महीने प्रोटीन और ऊर्जा को संतुलन बनाए रखता दिखा पे काम कर सका। बीज का चयन की बात करें तो हमेशा प्रमाणित बीज जो है वन को जो उपयोग अपने करना चाहे संकर किस्म का बीज जो है विको प्रयोग आप ही करना चाहवा। विकों का यह 30 से 40% तक जो है बढ़त अपना अच्छी व्यवहार। और खरपतवार नियंत्रण का वास्ते कई करना कि शुरुआती 30 दिनार महीने मतलब 1 महीना तक जो है निराई गुड़ाई जो जरूरी व्या करे। खरपतवार चारों जो है वो अपना पोषण गुणवत्ता ने कम करवारो काम करे तो खरपतवार नियंत्रण को काम अपन अवश्य करना है। कीट और रोग प्रबंधन की बात करा तो देखो कि चारा फसल जो है वन में आमतौर पर तना छेद कीट जो है वन को प्रकोप रिया करे अणका नियंत्रण वास्ते अपन संतुलित उर्वरक देना चाहे फसल चक्र अपनावनो चाहे
रासायनिक छिड़काव की बात करना तो देखो अण में कम अपने 15-20 तना के ऊपरे जो चारों जो है वन में पशुओं ने अपना नहीं खिलावनो है, और अन्यथा कई वे के पशुओं में जो है जहर फैलवा को खतरो बने दु करे। तो यदि रासायनिक छिड़काव और अपना पशुओं ने चारों खिलावनो अण का बीच में जो है 15-20 तना

को अंतराल जरूर वेणो चावे। अणि बात ने आप सब किसान भाई ध्यान रख जो। भविष्य की राह की बात करना तो देखो अपना वर्तमान की जो टेम है अपने कम जमीन रहा महीने किसान भाई जो है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ने अपनावते दिखा यो काम कर सके तो वणी यो अपना वास्ते देखो नई तकनीक एक वरदान के रूप में है। तो अणमें बिना मिट्टी के केवल पानी रहा महीने नियंत्रित वातावरण 7-8 दिन के महीने भीतर ही देखो मक्का या बचे गेहूँ का बीज ने हरा चारा के रूप में उगाई सका। और यो चारों जो है अत्यधिक पौष्टिक और सुपाच्य भी व्या करे तो अपना डांडा चोपारा वास्ते बहुत ही बढ़िया रह सके। तो पशुपालन में सफलता को मंत्र यो है कि साल भर हरा चारा का नियंत्रण वास्ते अपना अपना उपलब्धता वेणी चावे और निरंतर यो काम अपने वेणो चावे। एक नियोजित फसल चक्र अपनावता दिखा मिश्रित खेती करता दिखा चारा ने संरक्षित करता दिखा जापी किसान भाई जो है पशुधन जो है वणी की उत्पादकता ने कई गुणा तक बढ़ाई सका। और यदि आपकी जानकारी रखा कि देखो रिपोर्ट जो आपने देवे है तो वणी हिसाब हम देखा कि उदयपुर का कृषि विज्ञान केंद्र है वणी भी आपकी जानकारी ले सका। उन्हीं क्षेत्र महीने देखो विशेष दरों जलवायु जो है वणी को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अनुसंचित चारा प्रजातियां जो है वणी की जानकारी भी अपने लेनी पड़ेगा। और देखो कि वे हिसाबों आप काम करा तो अपना जो विशिष्ट फसल जो है जिनमें ज्वार या मक्का वणी की जो है वैज्ञानिक खेती करा तो अपना चारों जो है अपारे में ना उपलब्ध वे सके। तो ई साबो का ये है कि पशुपालक भाई है बना का वास्ते यह बहुत जानकारी उपयोगी है। और आपकी खेती बाड़ी करा तो पशुपालन भी लारे लारे करा ताकि तालमेल 2 महीने बैठो देखो रहे। आपने खेती बाड़ी लारे लारे जो है दूध उत्पादन है वन की भी आमदनी वेती रहे। तो अपने डांडा चौपा भी जैसा भी रखा भली गाय राख मिली है या पचे भैंसिया राख मिली है तो वणारा वास्ते का यह है कि चारा को बंदोबस्त अपना करना चाहिए। और यो जो टेम चाली रो है उनमें देखो वर्खा की टेम आई रही है और गर्मी री टेम जा रही है तो अणी टेम पे जो है चारा को बंदोबस्त अपना करवो जरूरी है। लेकिन ई बात को पूरा ध्यान रखना है कि चारों जो आप लेना चाहिए रहा हाँ जो खेती कर रहे हैं हाँ वो अपना डांडा चौपारा वास्ते जहरीलो नहीं वे और हरों चारों माने उपलब्ध वे हरों चारों डांडा चौपाना उपलब्ध वेगा तो वणा को पौष्टिकता वणा में बनी दिख रहेगा वणा में पोषण बने देखो रहेगा और दूध उत्पादन जो है वो प्रभावित नहीं होगा। आप तो वही हिसाबों के कि चारा फसल जो है वन को प्रबंधन आप ये सभी ध्यान रखन करना चाहवा और उम्मीद करना कि यह जानकारी जो है अपना किसान भाई वास्ते बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित वेगा सा। तो या तो वही जानकारी है वे कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है तो चाला सा राम राम सा।

हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में। आज हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए विजयपथ फिल्म के गाने के साथ।

ये गाना अभी आपने सुना, फिल्म थी खामोशी, और इस गाने को गाया था अलका याग्निक के साथ उदित हरिहरन ने। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का नगमा।

0: गुड्डी की फीस का
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
0: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दिल तो पागल है, इस फिल्म का नगमा जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। सदाबहार नगमों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गाना मैं खिलाड़ी।

0: इस गाने के साथ ही सदाबहार नगमों का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आबो हवा।
1: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन

0: कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहां एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा सूत्र अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आबोहवा। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत, कलाकार हरिहरन।

0: अभी अपने सुगम संगीत कार्यक्रम में हरिहरन के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे सुने।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8:00 को है आकाशवाणी दिल्ली से, सुनिए समाचार प्रभात, फिर 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11:00 आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: जय
1: जय
0: हिंद
1: हिंद बच्चों।
0: बच्चों। ममता आज तो बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहन कर आई हो, बड़ी सुंदर सुंदर लग रही हो। वही क्या कुछ खास बात है आज?
1: ऐसा तो कुछ नहीं है, बट कभी कभी इच्छा होती है कि हाँ कुछ अच्छा से कपड़े पहने, कुछ अच्छे से तैयार हों। और माला, हमारी जो एनिवर्सरी है शादी
0: हाँ
1: की, सालगिरह, वो भी आज के दिन है, तो थोड़ा सा वो है कि दिन को खास बनाना है, तो कुछ
0: बिल्कुल
1: अच्छा, कुछ चेंज अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए।
0: बिल्कुल आना चाहिए। और भाई हम उन बच्चों को भी है ना बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे जिनका आज
1: जन्मदिन
0: जन्मदिन
1: है।
0: है। तो बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और बच्चों अच्छे दिन पे अच्छी शुरुआत और एक अच्छा संकल्प। हम कहेंगे बच्चों अब बारिश आने वाली है ना, तो अपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से एक प्यारा सा
1: पौधा जरूर
0: जरूर लगाएं
1: लगाएं।
0: और पौधा लगाकर उसका ध्यान रखें। और ममता ये बात हम आपसे भी कहेंगे कि कोशिश आप भी करें कि
1: आज हमारी एनिवर्सरी है, तो आज के दिन हम एक पौधा जरूर लगाएं। बिल्कुल माला
0: और
1: दीदी, बहुत अच्छी सीख दे रही है बच्चों, और मैं तो इसका जरूर पालन करूंगी और कहूंगी कि आप भी ऐसी कोशिश जरूर करें।
0: बिल्कुल देखो ना ममता, हरियाली सबको अच्छी लगती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तो हम तुरंत बाहर दौड़ते हैं, और बाहर अगर खुले में अगर छोटे छोटे या फिर बड़े पेड़ होते हैं तो
1: तो
0: अच्छा
1: छाया
0: लगता
1: भी देते हैं,
0: है,
1: हवा
0: कितना
1: भी देते
0: सुकून
1: हैं,
0: देते हैं,
1: सुकून
0: है ना।
1: मिलता
0: उस
1: है।
0: समय लगता है कि पेड़ों की कितनी
1: बहुत
0: अहमियत है
1: जरूर।
0: हमारे
1: अभी
0: जीवन में।
1: इस बार जितनी गर्मी पड़ी है ना वाला, वो सहन नहीं होती है ये
0: बिल्कुल
1: गर्मी,
0: सहन
1: और
0: नहीं हो रहा
1: उसमें अगर लाइटें बंद हो जाए तो मतलब हालत खराब हो जाती है। ऐसे में ऐसा लगता है कि भी आसपास अच्छी हरियाली हो और सुकून देता हो, वो स्थान बहुत अच्छा लगता
0: अच्छा
1: है।
0: लगता है। और देखो ना ममता, मैं बात करूं जहां मैं रहती हूँ टाइगर हिल में, वहां पौधे पेड़ बहुत है, पेड़ पौधे बहुत है, हरियाली बहुत है। तो कई बार ऐसा होता है लाइट चली भी जाती है तो एक बार सुकून लगता है कि खिड़कियां खोल देते हैं तो हवा आती। अब मुझे समझ में आने लगा है कि पौधों
1: पेड़ों का
0: का
1: बहुत
0: हमारे
1: महत्व
0: जीवन
1: है,
0: में कितना महत्व
1: और
0: है।
1: कोरोना ने भी यही सिखा दिया हमको कि भाई
0: बिल्कुल
1: ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए प्रॉपर, तो पेड़ होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है और हमें लगाने चाहिए, लगाकर ध्यान रखना चाहिए। हमारे मांगलिक अवसरों पर

0: हमें पौधों को बांटना चाहिए, उपहार में देना चाहिए, उपहार में लेना चाहिए और उसकी बराबर देखभाल करनी चाहिए। तब तो हमारे चारों तरफ क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनेगा हमारा उदयपुर, और हम चाहते हैं कि हमारा उदयपुर हमेशा ग्रीन और क्लीन रहे। तो मम्मा
1: बहुत
0: ये तो
1: अच्छी
0: रही
1: बात। हाँ
0: बात आज की, और आज आप क्या बच्चों को बताएंगी?
1: हम बच्चों को आज बताने वाले हैं राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के बारे में। बच्चों, 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं हर वर्ष, और यह दिन महान चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। और यह विशेष दिन चिकित्सा जगत के प्रति डॉक्टरों के अथक प्रयासों, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सम्मान में मनाया जाता है बच्चों। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी बीमार पड़े ही नहीं मारा,
0: बिल्कुल बिल्कुल, और
1: है ना।
0: कहते भी है ना ममता, एन एप्पल ए डे कीप अवे हो डॉक्टर, मतलब यदि आप रोज एक एप्पल खाते हो तो डॉक्टर से आपकी दूरी बन जाएगी, क्योंकि एप्पल
1: और
0: में बहुत कुछ होता है। तो ममता हम ये कहना चाहेंगे कि भाई डॉक्टर से अगर आपको दूरी बनानी है, कड़वी दवा नहीं खानी है, तो आप पोषण अच्छा सा लें।
1: और दूध पिए। और माला कहा भी जाता है कि करो योग, रहो निरोग, है ना। तो योगा को भी अगर हमारे जीवन में हम शामिल कर दें तो हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: योगा जो है पूरा प्राणायाम, आसन और जितना भी योगा में हमारे बॉडी के संचालन और सब आते हैं, तो हम पूरा निरोगी रहते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बीमारियों से,
1: एक्टिव रहते हैं।
0: बिल्कुल बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। योग करेंगे, अच्छा पोषण लेंगे, अच्छा नियमित व्यायाम करेंगे। और हम बच्चों से एक बात और कहेंगे कि भाई आप खेल को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि खेल जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। देखो ममता, खेल खेल में बच्चे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, और उनका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, उनकी हाइट इम्प्रूव होती है, उनके पूरी बॉडी का विकास होता है। तो हम बच्चों से कहेंगे कि बिल्कुल आप खेलें, व्यायाम करें, पढ़ाई को भी ध्यान रखें, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप टीवी और मोबाइल में मत रहिए। प्लीज़ आप घर कमरे से बाहर निकलिए, सुबह शाम अच्छी ठंडी हवा में निकलिए, अच्छे गेम खेलिए, पते सागर जाइए, आसपास के पार्क में जाइए। और प्लीज़ हम उन मम्मी से भी कहना चाहेंगे कि जो हमेशा बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है और कहती है तुम खेल लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर आप सभी से गुजारिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ा बाहर निकालिए, उनके साथ खेलिए, उनको आउटडोर गेम खिलाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आप भी मस्त रहेंगे, घर का बजट नियंत्रित रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में अच्छा सुकून देने लगेगी एक छोटी सी समझदारी से। तो क्यों ना ममता हम छोटी छोटी समझदारी करें।
1: और बच्चों, अगर हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, तभी हमारा मन पढ़ाई में भी लगता है ना, मन एकाग्र भी रहता है और हमें कुछ काम करने की भी इच्छा होती है। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक रूटीन निश्चित करें। और अब हमारा छुट्टियां ख़त्म होने को हैं और बच्चों के स्कूल भी चालू होने वाले हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बच्चों को इस बार पूरी तैयारी से स्कूल भी जाना है और अपना शरीर का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई भी करना है। तो बच्चों, आपको फिर से अलर्ट हो जाना है अपने शरीर के प्रति भी और अपनी पढ़ाई के प्रति भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल ममता, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब बच्चों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनवाओगी ममता?
1: बम बम बोले मस्ती में डोले।
0: चलो आओ तो सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: बम बम बोले, मस्ती में डोले। बिल्कुल, हमारे बच्चे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं जब वो मस्ती करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, मस्ती तो हम कहते हैं बच्चों से कि मस्ती तो बनती है और मस्ती करनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि मस्ती के साथ साथ अब स्कूल जाने की तैयारियां भी आप शुरू कर दीजिए। जो ममता न्यू एडमिशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो पेरेंट्स ने तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि बच्चे एकदम जाते ही रोना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए ममता कि जब बच्चा स्कूल जाने के लिए लायक हो तो कुछ दिन पहले से उसको स्कूल जाके दिखाना, स्कूल की टीचर से मुलाकात करवाना
0: वहां के
1: जरूर,
0: टॉय से
1: हाँ
0: खेलने
1: खेलना,
0: देना। हाँ,
1: तो ये
0: थोड़ा
1: जरूरी।
0: फेमिलियर होना बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल,
0: बच्चों का।
1: अगर बच्चा है ना उस जगह से
0: नए
1: रूबरू,
0: माहौल में जाता है तो बच्चा बहुत रोता है।
1: हाँ, तो जरूरी है कि वहाँ टीचर्स जो उनके क्लास टीचर्स है उससे बच्चा रूबरू हो जाए थोड़ा थोड़ा। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये है ममता कि बच्चा जब जाता है तो उसकी पसंद का खाना अगर उसके टिफिन में रख दिया जाए तो थोड़ा खुशी खुशी चला जाता है। तो हम उन सभी पेरेंट्स से कहेंगे जिनके बच्चे न्यू एडमिशन में हैं और स्कूल जाने वाले हैं, प्लीज़ आप बच्चों के साथ जबरदस्त, कई पेरेंट्स होते हैं ममता, मैंने देखा है कई माँ होती है जो मार पीट के भेजती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट दिन से ही बच्चा अगर मायूस हो जाएगा स्कूल जाने में तो उसको अच्छा, आप उसके खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दो।

0: वो उसका अच्छा टिफिन लाओ, कलरफुल बोतल लाओ, और जो वो बच्चा कुछ कहता है उसके और उसकी तैयारी करो ताकि उसको जाने की उमंग रहे, वो उत्साह से जाए। वो एक बात बताऊँ ममता, एक हमारे परिचित की बिटिया है ना, वो स्कूल भेजने वाले थे तो उनकी मम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि ये तो देखना स्कूल जाएगी तो बहुत रोएगी,
1: रोएगी।
0: मैं कैसे संभालूंगी। और जब वो छोड़ने गई तो उन्होंने आके मुझे बताया कि जब मैंने इसको क्लास में छोड़ा तो उसने कहा मम्मी बाय आप
1: बाय।
0: जाओ,
1: हाँ बहुत
0: क्योंकि
1: अच्छा
0: वहाँ
1: लगता,
0: हाँ
1: बच्चों को देखकर बहुत खुश
0: खुश हो
1: होते हैं।
0: गई, वहाँ इतने
1: और
0: सारे टॉय थे
1: हाँ
0: और मैडम ने बड़े प्यार से दुलार से बच्चे को लिया। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि बच्ची देखो कहाँ, तो मम्मी चिंता कर रही थी कि मेरी बेटी रोएगी, मैं कैसे संभाल लूंगी, ये तो वहाँ रह नहीं पाएगी। और बच्ची ने जैसे क्लास में एंटर हुआ बच्ची ने बाय कर दिया कि मम्मी आप जाओ मैं आ जाऊँगी। और अब जिस दिन छुट्टी होती है उसकी मम्मी बताती है कि जिस दिन छुट्टी होती है उसको अच्छा नहीं लगता, कहते
1: अच्छा
0: मम्मी मुझे
1: सही।
0: स्कूल भेज दो। तो कई बार क्या होता है कि ममता स्कूल का एनवायरनमेंट भी बच्चों के लिए पॉजिटिव
1: बहुत
0: होना बहुत
1: अच्छा।
0: ज़रूरी है।
1: हाँ
0: कई
1: जरूरी है।
0: टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से टिकल करते हैं बच्चों के ना बाल संसार को, वो जानने लग जाते हैं और बच्चों के हिसाब से जब काम करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता
1: और
0: है।
1: मैं ये सोचती हूँ माला कि थोड़ा टाइम बच्चों को देना चाहिए, है
0: बिल्कुल
1: ना। थोड़ा बच्चे उस माहौल में ढलने की थोड़ी कोशिश करें, और अपना जो प्रेशर है वो बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और बच्चे जैसे उनको अच्छा लगे, जितनी देर वो बैठना चाहे, जितनी देर वो मतलब वहाँ पर रुकना चाहे, उस हिसाब से ही उन्हें रुकना चाहिए, रुकने देना चाहिए, और ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी
0: मैं तो
1: चाहिए।
0: कहती हूँ ममता कि बच्चों को खेल खेल में सिखाएं, लर्न बाय फन सिखाएं। आप जबरदस्ती नहीं कि पहले दिन ही आप नोटबुक लेके और उसको पढ़ाना उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे तो बच्चे में आत्मग्लानि हो जाएगी, वो स्कूल जाना पसंद नहीं। आप उसको प्यार से सहजिए, आप उसको प्यार से समझाइए। अभी तो ममता बहुत सारे इतने अच्छे खिलौने टॉयज इतने अच्छे हैं कि बच्चों को देख के अट्रैक्शन बढ़ता है। प्लीज़ आप बच्चों के
1: और
0: साथ
1: खेलते खेलते सीख भी जाते हैं
0: सीख भी
1: बच्चे।
0: जाते हैं, बच्चों के साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती ना करें, उनके मन माफिक उनको पढ़ाएं, उनके मन माफिक उनको समय दें। और ममता बच्चों के तो इतने कलरफुल टॉयज़ हैं, इतनी कलरफुल बुक्स हैं, और आजकल तो ऑडियो वीडियो भी बुक्स
1: बहुत
0: बहुत सारी,
1: ज़्यादा
0: हाँ,
1: हाँ आ
0: तो बच्चों
1: जाती
0: को
1: है।
0: अच्छा लगेगा। बस ये है कि आप उनके मनपसंद उनका टिफिन लंच बना के दें।
1: और ये तो छोटे बच्चों की बात हम माला कर रहे हैं, और जो बच्चे हमारे ऑलरेडी स्कूल में हैं और उन्होंने मतलब अप्रैल मई में थोड़ा पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद में ये छुट्टियाँ आई और छुट्टी के बाद में फिर से स्कूल जाने का समय आया है, तो उनका जो सोने का रूटीन है माला, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में आराम से देर तक सोते रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि बच्चों अब आप अपना रूटीन चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब आपको फिर से स्कूल के लिए तैयारी करना है, तो आप सुबह रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, और अपना रूटीन जो है, अपना जो खाना है आपको, खाना और नाश्ता अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। नाश्ते के टाइम में आप नाश्ता लें, और लंच स्कूल लंच जब होता है तब आप खाना शुरू करें, ताकि आपका जो हैबिट है वो स्कूल के हिसाब से फिर से शुरू हो
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: बिल्कुल जो बेसिक रूटीन है उसको बना के रखे। और ममता कहते भी हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो सुबह जल्दी सोता है रात को जल्दी सोता है सुबह जल्दी उठता है, उस बच्चे का दिमाग वैसे ही शार्प रहता है और उसके सारे काम सिस्टम से होते हैं, समय पर होते हैं, और समय पर काम करने वाला बच्चा शरीर से दिमाग से मन से हमेशा तंदुरुस्त रहता है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही ममता ने कि भाई बच्चों को टाइम पे सुलाएं, टाइम पे जगाएं, टाइम पे खिलाएं, टाइम पे तैयार करें, और कुछ हैबिट्स में आप चेंज करवा दें। क्योंकि ममता दादी नानी के घर पे हैं बच्चे, कहानियाँ सुनने के चक्कर में लेट नाइट तक जागते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है।
1: और बच्चों, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो आप अपनी कॉपी किताबें भी व्यवस्थित कर लें, जो भी अगर आपको कुछ होमवर्क दिया है तो उसको आप समय पर पूरा कर लें। इसके अलावा आज जैसे माला दीदी ने बताया है कि अपना जो टिफ़िन बॉक्स है, बैग है, और आपका आईडी कार्ड है, और जूते हैं, मोजे हैं, सब आप व्यवस्थित कर लें, ताकि आपको स्कूल जाते समय, क्योंकि सुबह सुबह जो माला होता है, सुबह का टाइम इतना हड़बड़ाहट में होता है बच्चा, और अगर उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो
0: तो
1: फिर वो
0: रोना शुरू
1: नर्वस हो
0: करता है,
1: जाता है।
0: नर्वस
1: हाँ,
0: हाँ
1: उस समय आप मतलब नर्वस भी हो जाएंगे, आप लेट भी हो जाएंगे, और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, ऐसी हड़बड़ाहट आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है।
0: बिल्कुल तैयारी करके रखना है और मम्मी को भी परेशान नहीं करना। आप समझदार हैं, आप अपना काम व्यवस्थित तरीके से खुद करके रखें, क्योंकि देखो ना ममता माँ को भी सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, टिफिन बनाना है और
1: बच्चों को उठाना
0: उठाना
1: है,
0: है,
1: तैयार
0: जगाना है,
1: करना
0: बहुत
1: है।
0: सारे
1: हाँ
0: काम हैं। तो प्लीज़ छोटे छोटे काम आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, अपनी समझदारी पे करें। रात को सोने से पहले आप अपना बैग व्यवस्थित करें, अपनी ड्रेस को देखें, अपने जूते मोजे सब व्यवस्थित करें ताकि मम्मी को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप व्यवस्थित होके जाएंगे। और जब बच्चा खुश होके स्कूल जाता है तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है। जिस दिन बच्चा रोता है या बच्चा परेशान होता है उस दिन उसका पूरा दिन खराब होता है, क्योंकि बच्चा घर

0: दुखी होके गया है, स्कूल में जाके भी उसका मन नहीं लगता। तो बेटर यही है कि आप बच्चे के साथ, बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें डालें। देखो ममता, इसमें हम बड़ों का भी रोल रहता है, हम जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी आदतों की पहल करें। हम खुद रात को टाइम पे सोएं, हम अपने सामान व्यवस्थित करें। बच्चा देखता, बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा घर से, बिल्कुल घर से सीखता है। माँ
1: बच्चे तो फॉलो करते हैं पेरेंट्स को, तो बच्चों पेरेंट्स को भी ये बात का ध्यान रखना है कि हम अपना काम अगर व्यवस्थित करेंगे और हम अपना काम खुद करेंगे तो बच्चे भी हमसे देख कर बहुत कुछ सीखेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत से बच्चे होते हैं ममता, अपना काम खत्म होने के बाद वो अपने सामानों को बिल्कुल
1: व्यवस्थित
0: करते
1: रखते
0: हैं,
1: हैं।
0: क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं, अपने बड़े भाई बहन दीदी को देखते हैं। और कुछ होते हैं जो करके छोड़ देते हैं, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, क्या हुआ परसों कर लेंगे, ऐसा देखते हैं, तो बच्चे भी ऐसा सीखते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छी हैबिट्स डालिए, गुड हैबिट्स डालिए, अच्छी हैबिट्स बच्चे को आगे तक अच्छा ही बना के रखेगी। और ममता, आप सुनवाएं प्यारा सा गीत।
1: हाँ।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात।

0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: और माला, बहुत अच्छा गाना आपने सुनाया है, और हम तो बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि बच्चों आप तैयारी कर लीजिए, मानसून आने वाला है और बारिश की तैयारी शुरू होने वाली है। तो आप अपने आसपास जहाँ भी आप पौधा लगाना चाहते हैं, जहाँ भी खाली स्थान हो, तो अपने आसपास पौधा जरूर लगाएं और उसका रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखें।
5: बहुत अच्छी जानकारी ममता दीदी ने दी, और बहुत सी बातें करना हमारी अधूरी रह गई है, लेकिन देखो ममता अब समय हो चला है, तो इजाजत ले लें।
4: बिल्कुल,
5: तो दीजिए इजाजत।
4: जय हिंद बच्चों।

श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ऋचा ख्यानी, लेकर आई हूं कार्यक्रम फिल्म संगीत में फिल्मी गीतों का। आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवाएंगे कुछ बहुत ही प्यारे 1990 के दशक के बेहतरीन गीतों में से कुछ गीत, जिनको आपको सुन के अपने आप ही बहुत ही बेहतरीन महसूस होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके दिल से कनेक्टेड हैं। तो आइए सुनते हैं कि पहला नगमा।

बच्चे सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम बगिया के फूल। प्रसारण होता था आकाशवाणी उदयपुर से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। अब आनंद लीजिए फिल्मी तरानों का।

दिल तो पागल है इस बेहतरीन रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मूवी का ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना हरिहरन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस फिल्म में जो संगीतकार थे वो थे उत्तम सिंह। एक ही संगीतकार ने सारे गीतों को संगीत दिया था और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, अपने समय के बेहतरीन रचनाकार जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, कुछ ऐसा दौर होता है जब हमें सिर्फ अच्छे ही गाने सुनने को मिलते हैं, वो गाने याद रह जाते हैं और ज़िंदगी भर वो गाने हम कभी भी सुन सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही फिल्मों से ऐसे ही गीत आज हम आपके लिए लेकर आएँ अपने इस

कार्यक्रम में। अगला गीत फिल्म दिल से उदित नारायण और महालक्ष्मी जी की आवाज़ें, एआर रहमान का संगीत, और इस गीत को लिखा है गुलजार ने, तो सुनिए ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत आपने भी सुना, और बहुत ही बेहतरीन नगमा जिसे अपनी आवाज़ दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत से सजाया था जतिन ललित ने, इस गीत को लिखा था समीर और अनजान ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब पेश है कार्यक्रम में आखिरी नगमा, जो गीत है तो फिल्म से, फिल्म का नाम हम आपको बता रहे हैं सिर्फ तुम, पर इस गीत की एक गज़ब की जो बात है वो ये है कि एक सूफियाना कव्वाली है जिसे गाया था साबरी ब्रदर्स ने, अमीन साबरी और फरीद साबरी, इन दोनों मशहूर साबरी ब्रदर्स ने इस खूबसूरत कव्वाली को गाया था, और इस कव्वाली में उनका साथ दिया था महिला गायक जसपिंदर नरूला ने, और उनकी आवाज़ के भी क्या कहने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो एक सूफियाना कव्वाली है जिसे संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और लिखा है समीर ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी नगमे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब जुड़ते हैं आकाशवाणी जयपुर से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षा काल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: रोजगार के

0: अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
0: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आप है आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। महिलाएं अब सुनेंगी उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: हवा की लहरों पर चलती है अपनी बात, हवा की लहरों पर चलती है अपनी बात, दिलों को जोड़ती है हर मुलाकात। प्यार और अपनापन लिए हैं हम हाजिर, प्यार और अपनापन लिए हैं हम हाजिर, स्वागत है आपका, सुनिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। तो स्वीकार कीजिए इन्हीं प्यार भरे शब्दों के साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। तो आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी रिमी नंदी
1: और नम्रता चौधरी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। तो नम्रता, हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने श्रोताओं के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए।
1: बिल्कुल
0: हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और उनका मनोरंजन भी करवाएंगे।
1: तो आज हम क्या बात करने वाले हैं रिमी, जरा एक झलक दिखा दें हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल
1: तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सूची में स्थानीय पर्यटन की संभावनाएं हम
0: बहुत ही अच्छा विषय है।
1: है ना, और बातचीत करेंगे पर्यटन एवं विरासत संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है। और आज क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती है, कुछ बातें हम उनके जीवन पर करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे देश के जो बड़े नेता हुए या शख्सियत हुई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो हम लोगों को सीखने को मिलता है, विशेष तौर पे युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिलती है। और अंत में हम आज रेसिपीज़ बताने वाले हैं फ्लेवर्ड लस्सी की,
0: क्या बात है, मेरे
1: तो
0: मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, और जबकि अभी तो
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम की शुरुआत ही है।
1: तो श्रोताओं से यही गुजारिश है कि अंत तक साथ में बने रहें, बहुत सारी जानकारी आज आप तक आने वाली है।
0: बिल्कुल। तो सबसे पहला विषय तो काफ़ी अच्छा विषय है, और वैसे भी हमारा शहर झीलों का शहर है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, और जब पर्यटन का नाम आता है तो हम अपने शहर को तो भूल ही नहीं सकते। सबसे पहले जो कुछ नाम आते हैं दिमाग में, उनमें से हमारा शहर उदयपुर तो है ही।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: अभी भी जो दुनिया के 8 सबसे अच्छे स्थान हैं मानसून में बारिश में घूमने के लिए, उनमें उदयपुर तीसरे नंबर पर है। तो हमारे लिए तो ये बहुत
0: बहुत,
1: गर्व की बात है ही,
0: बिल्कुल बहुत बड़े
1: लेकिन
0: गर्व की बात है।
1: इसके अलावा भी रिमी ना, स्थानीय पर्यटन की संभावनाएं अगर हम खोजें तो सिर्फ उदयपुर ही नहीं, अभी पूरे देश में चल रहा है कि आप अपनी अपनी जगह को विकसित करें, और बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी हो सकता है, हमारे देश में हर तरह से बहुत सारी धरोहर हैं, जैसे कहीं पर ऐतिहासिक मिल जाएगी, कहीं पर सांस्कृतिक है, कहीं पर धार्मिक है, और आप जैसे कोई औद्योगिक एरिया भी हो सकता है।
0: बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल।
1: अगर जैसे आप यहाँ से हम थोड़ा सा दूर जाएं तो निम्बेड़ा में जीके सीमेंट से, वंडर सीमेंट से बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ सिखाना है या इसको पर्यटन के क्षेत्र में ले जाना है, तो आप ऐसे औद्योगिक एरिया को भी आप उसमें विकसित कर सकते हैं, लोकल पर्यटन में।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारा भारत देश तो पर्यटन में इतनी संभावनाएं देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक सर्वे के अनुसार WTTC के ने कहा है कि जैसे 2019 में GDP में यात्रा एवं पर्यटन के योगदान के मामलों में भारत 185 देशों में 10वें स्थान पर रहा है, और स्थानीय स्तर पर आधारित पर्यटन मॉडल से केवल गाँव में 15 मिलियन अतिरिक्त पर्यटकों को लेकर लाकर पर्यटन को $25 अरब तक बढ़ाया जा सकता है, कुछ इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि है अगर हम पर्यटन को और बढ़ावा देते हैं, भले वो ग्रामीण पर्यटन हो, या जैसे तुम अभी औद्योगिक क्षेत्र का बता रही थी, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित हो। तो
1: बिल्कुल
0: पर्यटन में इतनी संभावनाएं हैं कि आप कोई सा भी क्षेत्र देख लीजिए, इतना बहुआयामी विस्तार किया जा सकता है।
1: हाँ
0: जैसे संग्रहालय हो गया, मनोरंजन के अलग अलग स्थल हो गए, इसके अलावा भोजन, जैसे आप कहीं भी जाए पर्यटन स्थल में
1: हाँ
0: तो मतलब हम
1: हर जगह का
0: देखिए
1: लोकल स्वाद
0: हर,
1: है।
0: हाँ बिल्कुल, प्रत्येक जो स्थान होते हैं वहाँ का जो क्षेत्रीय भोजन है, वहाँ के जो तरह तरह के व्यंजन होते हैं, वह सभी पर्यटकों को लुभाते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा रिमी, कभी ये महसूस किया है कि हम उदयपुर में रहते हैं है ना, लेकिन हम जो कहते हैं ना टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर हम बहुत कम जाते
0: क्योंकि घर की
1: हैं
0: मुर्गी दाल बराबर,
1: है
0: कई
1: ना,
0: बार ऐसा देखा गया है।
1: और रोज़ के कामों में हम लोग व्यस्त रहते हैं, फिर
0: हाँ
1: लगता है
0: हाँ
1: उस भीड़भाड़ भरे इलाके में कौन जाए है ना, लेकिन कभी कभी अपने यहाँ का जो लोकल एरिया है उसको भी एक्सप्लोर करके देखें, बहुत आनंद आता है।

0: बिल्कुल सही कह रही
1: और
0: हो।
1: जब स्थानीय पर्यटन की हम संभावनाएं खोजते हैं तो उसके लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आपके यहाँ का कोई हस्तशिल्प है, जैसे हमारे यहाँ पर लकड़ी का काम होता है, किसी और जगह पे मिट्टी का कोई काम होता हो, कहीं पे पंजाब के आप कुछ एरियाज में चले जाएं, फुलकारी, अपने बाड़मेर के इधर चले जाएं तो वहाँ का बहुत अलग तरह का कशीदा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हस्तशिल्प के तौर पे आप प्रमोट कर सकते हैं। परिवहन को 100% काम मिलता ही है,
0: बिल्कुल।
1: ट्रांसपोर्टेशन
0: और
1: चाहिए
0: देखा
1: ही।
0: गया है कि आधारभूत जो संरचना है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, उसमें भी काफ़ी सुधार होता है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि देखो, जो हमारे घर में भी जब मेहमान आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने घर को हम और अच्छा, सुंदर, साफ़ सुथरा
1: बिल्कुल
0: रखें
1: सही
0: और
1: सही
0: अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनका आतिथ्य सत्कार को बहुत अच्छे से करें।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: ऐसे
1: जहाँ
0: में जब हमें
1: हाँ
0: पता रहता है कि बहुत पर्यटक आने वाले हैं देश विदेश से, तो हम अपने शहर को भी और अच्छा बनाने की कोशिश करते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: उस जगह की बिजली है, पानी है, सफाई है, या फिर जो कहेंगे मैनेजमेंट है, वो भी सुधर जाता है। और इसके अलावा भी जैसे क्षेत्र में जो संस्कृति है, जो लोक कलाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में लोग गणगौर देखने भी आते हैं। हम कितनी जगह देखेंगे कि कहीं पर कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुरी में बहुत
0: पूरी में बहुत भीड़
1: भीड़ रहती
0: होगी।
1: है ना,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो उन चीज़ों को भी
0: बढ़ावा
1: बढ़ावा
0: मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान सब जगह के अपने अपने अलग अलग होते हैं, आप उनको विकसित कीजिए। और सबसे बड़ी बात है रिमी, मैंने ये देखा है कि जब आपकी किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो आप सबसे पहले उसका संरक्षण करेंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को जब आप देखते हैं ना, तो आप ये पाते हैं कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला
0: बिल्कुल, अपनी
1: है ना,
0: धरोहर को संजो कर रखा
1: और
0: है।
1: हमने ये नहीं किया है। तो जब हम हमारे लोकल एरियाज़ को एज अ टूरिस्ट प्लेस देखेंगे ना, तब हमारे दिमाग में आएगा कि इनको हमें बचाना है, संरक्षित करना है।
0: बिल्कुल। और आजकल मैंने देखा है, क्योंकि शहरीकरण को बढ़ावा मिलता जा रहा है, मगर एक ऐसा भी तबका है हमारे समाज का, हम ही लोगों में से कुछ एक छोटा समूह ऐसा भी है जो ग्रामीण पर्यटन को बहुत पसंद कर रहा है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि रोजमर्रा की जो दौड़ भाग है, लोग उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। जब उनकी छुट्टियाँ आती तो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा सुकून ढूंढें। तो
1: सही
0: ऐसे
1: सही
0: में ग्रामीण पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके जो आपको ताज़ी हवा मिलती है और वहाँ के जो आप संस्कार देखते हैं, वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू होती है वह अपने आप में बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल
0: तो और जो सुकून मिलता है, सबसे बड़ी बात, आपको
1: सुकून।
0: ग्रामीण परिवेश में जो सुकून मिलता है और वहाँ के लोगों को जब आप देखते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो आपको लगता है कि हम असली मायने में अपनी धरती से जुड़े हैं, अपने देश से जुड़े हैं।
1: बिल्कुल हाँ, इस बात से रिमी ये भी याद आता है कि क्या होता है जब आप किसी बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल वाले टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो आपका एक टाइम बंद जाता है ना, 9 बजे यहाँ पहुँचना है, 5 बजे वो जगह बंद हो जाएगी, भीड़ भड़क्का है। लेकिन जब आप किसी ऐसी इको फ्रेंडली जगह पे या ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, तो सुकून शांति से आप सिर्फ वहाँ की जो जीवन शैली होती है उसमें ढल जाते हैं, तो असली सुकून मिलता है। सही बात है,
0: बिल्कुल। और
1: बातें बहुत सारी हो गई नहीं
0: बिल्कुल
1: रिमी।
0: बहुत हो गई है। हमारे श्रोता सोच रहे होंगे शायद ये गीत सुनाना तो भूल ही गए। नहीं,
1: हाँ
0: हम बिल्कुल नहीं भूले। चलते हैं आपको गीत की दुनिया में लेकर, सुनाते हैं प्यारा गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: रिमी, हमने बात, तुम कुछ कहना चाहती पहले बोलो।
4: नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही बीच में किसी वादियों में खो गए थे, कश्मीर की वादियों में या हमारे उदयपुर की वादियों में। और समय

0: है वापस अपनी बहनों से बात करने का, अपनी श्रोताओं से बात करने का।
1: बिल्कुल। अब ऐसे रिमी है ना, ये बात तो सच है कि हम कहीं भी जाएं उदयपुर को भूल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है हम बेस्ट जगह पे रह रहे हैं, हमारे
0: बिल्कुल
1: यहाँ
0: सही बात,
1: सब है
0: इसमें कोई
1: ना।
0: भी शक नहीं है, 100% सही बात है।
1: बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ है, तो जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर भी लगभग लगभग ऐसा ही सब कुछ है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इन सारी जगहों पर महिलाओं का योगदान क्या है और अपने योगदान को किस तरह से और बढ़ा सकती हैं।
0: बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने बात की कि पर्यटन में क्या संभावनाएं हैं, जो स्थानीय पर्यटन की जब हम बात करते हैं, तो फिर हमारा कार्यक्रम तो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है, और महिलाएं हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुनती भी हैं और
1: बिल्कुल
0: प्रेरणा भी लेती हैं।
1: सही।
0: हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहुत सारी बातें बहुत सारी महिलाओं को अच्छी लगती होंगी, और शायद कई बार, हो सकता हमेशा तो नहीं, मगर कई बार उनके लिए प्रदर्शक भी होती होंगी, तो
1: बिल्कुल। और
0: ऐसे
1: कहीं ना
0: में वे
1: कहीं अमल में लाती होंगी, मुझे पूरा
0: बिल्कुल लाती
1: विश्वास है।
0: होंगी, बिल्कुल लाती होंगी। तो हम इस बात को तो भूल ही नहीं सकते कि पर्यटन भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं अपना हुनर दिखा रही हैं। आप पर्यटन का कोई भी आप एस्पेक्ट ले लें, पर्यटन का कोई भी आप किसी भी उसके छोटे मोटे विषय पर अगर बात करें, तो आप देखेंगे महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं।
1: सही
0: तो
1: बात
0: जैसे हम
1: है।
0: व्यंजन की बात कर रहे थे, तो जो भी पर्यटक स्थल होते हैं आप वहाँ देखेंगी कई महिलाएं ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसे स्टार्टअप भी शुरू किए हैं, जैसे कोई चाट पकौड़ी की दुकान हो, या फिर आप अगर व्यंजन की बात करते हैं तो पंजाबी व्यंजन हो, राजस्थानी व्यंजन हो, गुजराती व्यंजन, और ना जाने क्या क्या, कॉन्टिनेंटल और इंडियन दोनों ही वो बहुत अच्छे से बना लेती हैं, और
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ खुद तो उनके पास रोजगार है ही, साथ में वो 10 लोगों को और भी रोजगार देती है।
1: सही बात है। अगर हम बात करें कि महिलाएं अपना क्या योगदान दे सकती हैं, तो इसमें एक तो आपने बताया ही है रिमी, इसके अलावा स्थानीय कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण और प्रचार करना, ये हम जगह किसी भी जगह जाते हैं ना, तो हम हर जगह यही देखते हैं कि महिलाओं के द्वारा हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम किया जाता है।
0: बिल्कुल, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, इसके अलावा आप कोई सा भी हस्तशिल्प देखें, जैसे छोटे छोटे बैग बनाना या घर के सजावट की चीज़ें बनाना,
1: हथकरघा हो
0: हाँ
1: गया।
0: हथकरघा हो गया, तो जैसे हमारे उदयपुर में शिल्पग्राम मेला भी कितना पॉपुलर है, सभी जानते हैं इसके बारे
1: हाँ
0: में, तो जब वहाँ भी आप देखते हैं, उस मेले में भी जाते हैं, तो आप पाएंगे कि अक्सर स्टॉल्स में आपको महिलाएं ही
1: बहुत सारी
0: दिखेंगी,
1: महिला व्यवसायी
0: बहुत सारी
1: होती है।
0: महिला व्यवसायी होती हैं, और अलग अलग राज्यों से आती हैं, भले ही वह कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो,
1: हाँ
0: या
1: सभी जगह,
0: दिल्ली हो,
1: बिहार,
0: सभी जगह, बिहार,
1: छत्तीसगढ़ सब
0: छत्तीसगढ़,
1: जगह
0: सब
1: से,
0: जगह से
1: पश्चिम
0: आते
1: बंगाल
0: हैं, और
1: बहुत।
0: अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने राज्य का जो सबसे अनोखा काम होता है वह लेकर आते हैं, और वहीं बनाकर बैठे बैठे बनाते भी रहते हैं। आप देखेंगे ऊनी वस्त्र भी काफ़ी सुंदर बनाते हैं, आप देखेंगे गुलदस्ते बनाते हैं, और ना जाने क्या क्या,
1: सही
0: मतलब
1: बात
0: अगर
1: है
0: हम इसकी सूची बनाएं तो वो सूची ख़त्म ही नहीं होगी।
1: बिल्कुल। और मैं इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, अपनी यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है और इतिहास है और परंपराएं हैं उनकी जानकारी दे सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब गणगौर मनाई जाती है, तो हम देखते हैं बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या है हमारे यहाँ पे, जो हमारे धर्म है उनको लेकर भी बहुत सारी जिज्ञासा है कि मंदिर में आप क्यों जाते हैं या शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जानकारियाँ हैं, ये भी हमारे स्थानीय पर्यटन को बढ़ाती हैं और महिलाएं
0: बिल्कुल,
1: इसमें बहुत अच्छा योगदान देती हैं और दे भी सकती हैं।
0: और नम्रता, आजकल होम स्टे का भी काफ़ी चलन है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कई लोग पसंद करते हैं कि वो किसी होटल में रहने की बजाय होम स्टे को वो प्रेफर करते हैं, उसमें रहते हैं, उन्हें लगता है कि होम स्टे रहने में रहने से उनको एक अलग सा ही माहौल मिलता है, वो अपने तरीके से वहाँ रह पाते हैं, और
1: वहां की जो
0: बहुत घर
1: लोकल,
0: जैसी,
1: हाँ लोकल
0: हाँ
1: लाइफ है उसको जी पाते हैं।
0: हाँ उसको जी पाते हैं, और घर जैसी सुविधाएं भी उनको मिलती हैं, तो इसमें भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, कई महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे का संचालन कर रही हैं। और फिर जैसे मारो राजस्थान, तो हम अतिथि सत्कार में तो कहीं पीछे रहते ही नहीं
1: बिल्कुल
0: हैं, तो
1: बिल्कुल
0: आतिथ्य सत्कार में भी काफ़ी आगे हैं अब महिलाएं, उन्हें पता है कि किस तरह से किसी आगंतुक को, किसी भी पर्यटक को या अतिथि को किस तरह से खुश करना है, और साथ ही साथ हमारी महिलाएं कला में तो पीछे है ही नहीं, काफ़ी अच्छा नृत्य भी और गायन भी करती हैं, तो हमने देखा है कि कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ पर आप वहाँ की क्षेत्रीय जो नृत्य सम्मिलित होते हैं, उसमें कई औरतें हैं, कुछ पुरुष भी काफ़ी उसमें शामिल होते हैं और तरह तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाते हैं, तो इससे भी महिलाएं अपने आप को जोड़ रही हैं।
1: कुल मिला के लोकगीत हो गए, लोक नृत्य है या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम हमारी स्थानीय विरासत को जीवंत रख सकते हैं। इसके

0: अलावा महिलाएं दो काम और कर सकती है रिमी। एक तो है हमारे यहाँ पे जो भी है धार्मिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है या जो भी पर्यटन स्थल है, वहाँ पे सब लोगों को जागरूक करना, क्योंकि महिलाएं ही वो प्रेरणा होती है जो घर में भी एक धुरी बन के काम करती है, समाज में भी कर सकती है, कि इन जगहों को स्वच्छ रखा जाए, संरक्षण दिया जाए। और दूसरा, स्वयं सहायता समूह बनाकर, चाहे आप हस्तशिल्प के काम करें, चाहे वहाँ के पर्यटन के बारे में स्थानीय विकास में सहयोग करें, या फिर पर्यटन की जानकारी दें, इस तरीके से पर्यटन से जुड़े जितने भी काम है स्वयं सहायता समूह बना के किया जा सकता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो खुद का काम मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, दूसरा हमारी जगह की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारी जगह का विकास होता है।
1: और तीसरा कि आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करती
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इस प्रकार से हमने इतनी सारी बातें बताई, इतना हमने महिलाओं को कोशिश की है बताने की कि इतना सारा हमारे पास स्कोप है, हम चाहें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और कर भी रहे हैं, कर
0: बिल्कुल
1: भी रहे हैं। और आप अगर करती हैं तो आपको देखकर 10 महिलाएं और भी करेंगी।
0: सही बात है। तो कुल मिला के महिलाएं अपना बहुत अच्छा योगदान

0: पर्यटन के बारे में, स्थानीय विकास में सहयोग करें या फिर पर्यटन की जानकारी दें। इस तरीके से पर्यटन से जुड़े जितने भी काम है स्वयं सहायता समूह बना के किया जा सकता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो खुद का काम मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, दूसरा हमारी जगह की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारी जगह का विकास होता है।
1: और तीसरा कि आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करती
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इस प्रकार से हमने इतनी सारी बातें बताई, इतना हमने महिलाओं को कोशिश की है बताने की कि इतना सारा हमारे पास स्कोप है, हम चाहें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और कर भी रहे हैं, कर
0: बिल्कुल
1: भी रहे हैं। और आप अगर करती हैं तो आपको देखकर 10 महिलाएं और भी करेंगी।
0: सही बात है। तो कुल मिला के महिलाएं अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकती हैं। और जब लोकल की बात हो रही है तो एक जो गीत है वो वैसे रिमी फिल्माया गया कश्मीर पर है, पर मेरे दिल के बड़ा करीब है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे उदयपुर के लिए बना हो। तो सुनाए श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो नम्रता, हमने इतने महत्वपूर्ण संदेश सुने और साथ ही साथ इतना प्यारा गीत सुना। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है,
8: है ना? उदयपुर के ऊपर ही है ना, ऐसा लगता है ना।
7: बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा हम उदयपुर की वादियों का आनंद ले रहे हैं।
8: हाँ। अच्छा, आज रिमी हमारे जो नवे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी, उनकी जयंती है। आज 28 जून है और इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। और ये भारत के नवे प्रधानमंत्री रहे हैं 1991 से लगा के 1996 तक। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्वान, लेखक और अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। और इन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है।
7: क्या बात है। और जैसे कि तुम्हें बताया कि उन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है
8: हाँ।
7: उन्हें 17 भाषाएं बोलना आता था, तो यह बहुत ही बड़ी प्रतिभा है। बहुमुखी प्रतिभाशाली थे, क्योंकि जैसा कि तुमने बताया कि एक साहित्यकार भी थे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के और प्रोग्रामिंग में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। और साथ ही साथ वो राजनेता तो रहे ही हैं, सभी जानते, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो PV नरसिम्हा राव को आज के दिन हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। और हम उनके बारे में थोड़ी बातचीत भी कर रहे हैं कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय सेनानी भी थे और आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से राजनीति में शामिल हुए। और उन्होंने 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी किया। और उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं काफ़ी उल्लेखनीय हैं और काफ़ी सराहनीय भी रहे।
8: बिल्कुल।
7: और वे 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि सीमा अधिनियमों को सख्ती से लागू भी किया। बाद में 1978 में पुनर्गठित कांग्रेस के आंध्र प्रदेश से लोकसभा सांसद बने और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के ही मंत्रिमंडल में उन्होंने गृह मंत्री और रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में कार्य भी किया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे देश में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर तो काम किया ही, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए।
8: हाँ, कुल मिलाकर वो काफ़ी कम उम्र से ही राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए थे और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने काफ़ी सारे पद संभाले और बहुत अच्छे से संभाले। उनके मुख्य कार्य और भारत के प्रति जो योगदान रहा है, एक बार में उस पर नज़र डाल देते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार उन्होंने ही लागू किए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों की शुरुआत की। अगर तुम्हें ध्यान हो तो उस वक्त हम स्कूल में पढ़ते थे और ये डिबेट का काफ़ी गर्मा गर्म विषय रहता था कि उदारीकरण किया जाए या नहीं किया।

0: जाए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: विदेशी निवेश को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम किया और नई औद्योगिक नीति लागू की। भारत के विदेशी मुद्रा संकट से देश को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र के जो विकास की जो नींव है वो उन्होंने ही मजबूत की है, क्योंकि कंप्यूटर्स और दूसरा जो आईटी

0: सुनेंगे। और उससे पहले एक बात बताना चाहूंगी, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो
1: हाँ
0: क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे जनप्रिय और लोगों के अच्छाई के लिए, भले के लिए इतने अच्छे कार्य किए, तो उनको सम्मान देने के लिए आंध्र प्रदेश में उन्हें आंध्र प्रदेश का बृहस्पति ग्रह कहा जाता है।
1: क्या
0: बृहस्पति
1: बात है,
0: कहा जाता है मतलब सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसकी बात ही कुछ अलग है, उसका जो औहदा है वह कुछ अलग है। तो इस तरह से उन्हें बृहस्पति कहकर उन्हें काफ़ी सम्मानित किया जाता
1: सम्मानित किया
0: है।
1: जाता है। बहुत अच्छी बात बताई रिमी। और एक गीत सुना देते हैं श्रोताओं को, फिर चलते हैं रेसिपी की ओर।
0: बिल्कुल, हम अपने रसोई की तरफ बढ़ेंगे, पर सुनते हैं गीत।

0: हमने हमारे श्रोताओं से कहा था रिमी कि हम उन्हें बताने वाले हैं कि फ्लेवर्ड लस्सी कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रिमी ये है कि दही बहुत अच्छा जमा होना चाहिए। हमेशा दूध पहले से उबला हुआ हो, और जब आप दही जमाएं तो उसका टेम्परेचर गुनगुना सा होना चाहिए। फिर उसमें लगभग 2 चम्मच आप दही डाल दीजिए, और दही को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ऐसा ढकिए जो एयर टाइट हो, है ना, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। फिर जब दही ऐसा हो जाता है, तब जो अच्छा जमा हुआ दही ना, उसमें फिर आप क्या कीजिए, चीनी मिलाइए, और अपनी पसंद का कोई भी आप फ्लेवर मिला सकते हैं, आप बर्फ़ मिलाइए। अच्छा, फ्लेवर्ड करने के लिए क्या करना है, जैसे अगर आपको मैंगो लस्सी बनानी है तो
1: मैंगो
0: मैंगो
1: का
0: की
1: सीजन भी
0: पल्प,
1: चल रहा
0: है ना,
1: है।
0: मैंगो की पल्प मिला दीजिए, अच्छे से फेंटिए, मैंगो लस्सी रेडी। यही आपको स्ट्रॉबेरी के साथ करना है, और आप चाहें तो केसर इलायची की लस्सी भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप दही जमाते हैं ना, तब आप पहले ही उसमें इलायची और केसर मिलाकर आप दही जमाएं, फिर बाद में आप चीनी के साथ में उसको
1: बस
0: फेंटिए।
1: बस अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहनें तुरंत अभी सामग्री जुटाकर बनाना शुरू कर दी होंगी। तो मैंगो लस्सी बनाइए, पान लस्सी
0: बच्चों के लिए
1: बनाइए,
0: चॉकलेट मिलाई जा सकती
1: हाँ, और
0: है
1: बच्चों
0: रिमी,
1: के
0: है
1: लिए
0: ना,
1: चॉकलेट
0: चॉकलेट
1: लस्सी भी
0: लस्सी।
1: बनाई जा सकती है। क्या बात है।
0: तो इन बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ में समय हो चला है, तो लेते हैं विदा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब लिए चलते हैं आपको फिल्मी गानों की दुनिया में। आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 की फिल्मों के कुछ बहुत ही प्यारे से और फेमस नगमे। तो पहला गीत है फिल्म मैं वापस आऊँगा से, और ये गीत आपने कहीं ना कहीं रेडियो पर या फिर मोबाइल या टीवी में सुना ज़रूर होगा। तो चलिए एक बार फिर इसे सुनते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कोठा कोठा कोठा

ये गीत था 2026 में आई फिल्म सूबेदार से, जिसमें अनिल कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। जी डी कौर की आवाज़ थी और इस गीत को संगीत से सजाया था ऋत्विक ने। रचना की थी इस गीत की यंग वीर ने। अगला गीत एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज, या यूँ कह लीजिए धुरंधर 2 से। इस गीत की एक खासियत है कि इस गीत को गाया है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज ने, और सतिंदर सरताज की आवाज़ आपको अमूमन फिल्मों में नहीं सुनाई को मिलती है। वो एक बहुत ही बेहतरीन गायक हैं जिन्हें बाहर फॉरेन में ट्रिप्स के दौरान सुना जाता है या फिर नॉर्मली पंजाबी म्यूज़िक में ही सुना जाता है, लेकिन इस गीत में उनकी और जैस्मिन सैंडलर्स की जो जुगलबंदी है उसके तो क्या ही कहने हैं।

कॉकटेल 2 का ये गीत जिसे अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने, संगीतकार प्रीतम और रचनाकार अमिताभ भट्टाचार्य।

0: Akashwadi at 90.
1: कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आखिरी नगमा फिल्म ओ रोमियो से। इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है अनन्या वाडेकर ने और मौसिकी है विशाल भारद्वाज की, गीतकार हैं गुलजार। तो इसी गीत के साथ इजाज़त दीजिए आपकी रेडियो सखी रिचा ख्यानी को और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्मी नगमों का ये सफ़र जो था वो अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त 2:10 हो चुके हैं और आइए कार्यक्रम विकास चर्चा में आज आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, जो अन्यथा लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था। इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। 7 सितंबर 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन सौंपा था। इस योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी होने से एलपीजी कवरेज में भी 1 मई 2016 को 62% से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 को 99.8% तक पहुंचने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान भी किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है। फायदों की बात करें तो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1600 रुपये, यानी कि 1600 रुपये, या 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1150 रुपये का कनेक्शन शुल्क इसके अंदर रहेगा। इसके अतिरिक्त पीएमयूवाई के सभी लाभार्थियों को जमा राशि, मुफ्त कनेक्शन के साथ साथ पहला एलपीजी रिफिल और स्टोव यानी कि हॉट प्लेट दोनों मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं।

0: उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत अब गरीब परिवारों की वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है वही पात्र होंगी। लाभार्थी कई तरह से इस श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे कि SECC 2011 की सूची के अनुसार जो भी आते हैं वही इसमें पात्र हैं। अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्य योजना और इन सभी के जो लाभार्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया या फिर चाय बागान या पूर्व चाय बागान वाली जो जनजातियां हैं वे इन सब का लाभ उठा सकती हैं। यदि वो उपयुक्त जो हमने श्रेणियां बताई दोनों में अगर आते हैं तो आप इसके अनुसार 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके इसका लाभ उठा सकते हैं। नामांकन के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नामांकन कर सकते हैं। और आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आपका वैध फोटो पहचान पत्र चाहिए होगा और जिस भी राज्य से आवेदन आप कर रहे हैं तो राज्य की राज्य में अगर आपका राशन कार्ड अगर है बना हुआ तो राशन कार्ड चाहिए होगा या परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला कोई भी सरकारी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा वो भी आपको लगाना होता है, बैंक खाता संख्या और उसके साथ IFSC कोड भी आपको लगाना रहेगा, आधार कार्ड आपका उसमें रखना है लेकिन असम और मेघालय में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, पासपोर्ट आकार की आपकी एक छोटी सी जो है फ़ोटो भी अनिवार्य रहेगी। तो दोस्तों आज जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जानकारी हमने विकास चर्चा में दी और अब समय है हिंदी में समाचारों का हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा

0: प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर

0: भावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनीता भैसा, राम राम।
1: राम राम भावना भैसा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला हंगला किसान भाई ने अपनो राम राम सा।
1: देखो भाई, कार्यक्रम रो टेम भी और अपना सभी भाई बहन जो है, चाहे वर्षा रो मौसम वो, चाहे उनालो वो, हियारो वो, कसो भी मौसम वो, तो आपने जो है कार्यक्रम में इन्हें उपस्थित वही जावे। और देखो भाई, वे भी क्यों नहीं आप आटे भात भात री जानकारी करावा, चाहे मौसम री जानकारी वो, खेती बाड़ी री जानकारी वो, और कणी भी प्रकार री कोई भी जानकारी वो, तो सब जना आटे हली मली ने और लारे बैठने साझा करा सा।
0: सही बात है। और जानकारी रे साथ साथ मन भवन राजस्थानी लोकगीत भी तो आप ही सुनावानी।
1: हाँ,
0: और देखो सर, जटे आज आपने कार्यक्रम रो आगाज करा और बात करा, तो किसान री बात में किसान भाई ने बताई दिया हाँ, प्राकृतिक खेती कई कई लाभ वे वे।
1: हाँ,
0: और देखो सानिता भाई साहब, आप जानो हो कि प्राकृतिक खेती जो है, खेती बाड़ी री एक ऐसी पद्धति है जिनमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और दूसरा जितना भी कृत्रिम पदार्थ है उपयोग नहीं कीधो जावे, और अणि पद्धति में प्रकृति रे नियमों रे अनुसार खेती की दी जावे, और गोबर, गोमूत्र, जैविक खाद, जीवामृत, बीजामृत और दूसरा प्राकृतिक संसाधन रो उपयोग कीधो जावे है सा।
1: बिल्कुल। और अबारा टाइम में देखो, बढ़ती तकी पर्यावरणीय जीवी समस्या है, जनी महीने मिट्टी में री उर्वरता में कमी और कृषि लागत में बढ़वार रे कारण प्राकृतिक खेती रो महत्व जो है लगातार बढ़तो तको जई रयो। और या खेती देखो अपने किसान भैया ने, उपभोक्ता ने और पर्यावरण तीनों रे वास्ते जो है देखो लाभदायक सिद्ध वेती तकी जई रही है।
0: सही बात है। और अनीता भाई सा देखो, जटे बात करें हाँ कि प्राकृतिक खेती रो सबो बड़ो लाभ तो यो है कि अपनी जो मिट्टी है वंडी उर्वरता वणी रेवे, रसायन

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हाँ तो अनीता भाई सा, देखो सा तो बढ़िया मन भावन राजस्थानी लोकगीत सुनियो और लारे लारे संदेश भी सुनियो सा। और जटे आप ये कार्यक्रम में बात करिए हाँ प्राकृतिक खेती रे लाभ रे बारे में, तो क्यों नहीं किसान भाई ने अनी रे बारे में जानकारी और दानी सा।
3: हाँ सा, तो देखो भाई जल संरक्षण भी प्राकृतिक खेती रो एक बढ़िया लाभ है। अनी पद्धति में देखो मल्चिंग, मिश्रित फसल और अन्य प्राकृतिक जतरे भी तकनीका है वनारो उपयोग की दो जावे। जने की मिट्टी में नमी तो वनी तक ही रहे और सिंचाई रे वास्ते पानी की कम जरूरत पड़े। अणि महीने जल संसाधन आरो भी संरक्षण वेवे और हुकारी जा स्थिति ये वणी में फसला ने लाभ मिले सा।
2: और देखो सा अनीता भाई सा, प्राकृतिक खेती जो है अपने किसान भाई ने आत्मनिर्भर बनावा में सहायक वेवे। किसान भाई जो है भारी संसाधन पर कम निर्भर रहे और अपने खेत में उपलब्ध सामग्री रो उपयोग करे। अणियों कहिए कि वणारी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत वेवे और खेती में जोखिम भी कम वेवे। साथ ही आप ये बात करा कि देखो सा प्राकृतिक खेती ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर भी बढ़ता जा रहा है सा।
3: बिल्कुल, और या जो खेती है जलवायु परिवर्तन रे प्रभाव ने भी कम करवा में सहायक वेवे।
2: हाँ हाँ,
3: प्राकृतिक खेती मिट्टी महीने कार्बन रे संचयन ने बढ़ावो देवे। जणियों कहिए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करवा में मदद मिले है और अणि महीने देखो वैश्विक तापमान वृद्धि की समस्या ने नियंत्रित करवा

0: में भी यह जो है योगदान दे वैसा।
1: और देखो सानिता भाई साहब, प्राकृतिक खेती में मिश्रित खेती, फसल चक्र और जैव विविधता ने बढ़ावो दियो जाई रियो है। अणु कीट और रोगा रो प्रकोप कम वे रियो है और फसला री उत्पादकता में स्थिरता बनी दे रही है। किसान एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसला उगाइन अधिको अधिक लाभ प्राप्त कर सक रियो है।
0: सरकार भी देखो प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा वास्ते नरी सारी योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है भी चलाई रही है। किसान भाई ने जागरूक की दो जा रही है भी रासायनिक खेती रा दुष्प्रभाव ने हमजे और प्राकृतिक खेती ने अपनाई ने अपनी आय और मिट्टी की गुणवत्ता दोया में उदार कर सके।
1: सही बात है। और देखो सब कुल मिले तो अपने अनिता भाई सा किसान भाई ने यो ही कहना है कि जो प्राकृतिक खेती है एक टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल और किसान हितेशी कृषि पद्धति है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ावा में, उत्पादन लागत घटावा में, जल संरक्षण करवा में, पर्यावरण की रक्षा करवा में और स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध करावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है।
0: बिल्कुल। और अबारा टाइम में देखो प्राकृतिक खेती नहीं केवल किसान बहरी आर्थिक स्थिति ने मजबूत बनाई रही है बल्कि आवा वाली जितनी भी पीढ़िया है वनारे वाते भी सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करवारो मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। अंडे वाते देखो प्राकृतिक खेती ने अपनावनो चाहे वनो प्रचार प्रसार भी करनो चाहे और टेम री महत्वपूर्ण जरूरत है या अणी बारा में भी बतानो चाहे।
1: सही बात है। और देखो सर कुल मिले तो अपने किसान बहने यो कहो है कि देखो सर रासायनिक खेती करवारे बनस्पत अगर आप ही प्राकृतिक खेती करेंगा तो निश्चित रूप अपने आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे और हाथे हाथे आप ही मृदा स्वास्थ्य बारे में भी सजग रहेंगे और मिट्टी में रहवा वाला जतरा भी कीट है जतरा भी मतलब सूक्ष्म जीव है वनारे संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगा।
0: बिल्कुल भावना पैसा। और देखो कार्यक्रम में अपने किसान भाई लारे वाता चीता और जानकारियां तो और भी साझा करेंगे लेकिन आपको तो होना एक राजस्थानी लोकगीत
1: हाँ सा होना नहीं।

0: हाँ तो अनीता भाई साहब, यो तो सुनियो आप ही मन भावन राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सा
0: और देखो सर, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अबे आप ही अपने किसान भाई ने जानकारी दा कि देखो सर, मौसम रो जो साख है वह बदल रही है और आने समय जो है खेती री रणनीति किस तरह रणानी है, अंडे बारे में किसान भाई ने जानकारी दा सा।
1: बिल्कुल। और अबारा टाइम में देखो, जलवायु परिवर्तन और मौसम में वेरिया लगातार बदलाव ने किसान भाई वास्ते एक बड़ी चुनौती बन गया है।
0: हाँ
1: कदी तो
0: हाँ
1: देखो ज़्यादा वर्षा वे जावे, कदी हुको वे जावे, कदी ओलावृष्टि वे जावे, और कदी असामान्य तापमान फसला रे उत्पादन ने प्रभावित करे।
0: हाँ
1: ऐसा में
0: हाँ
1: देखो किसान भाई वास्ते जरूरी है कि वे बदलता का मौसम रे अनुसार अपनी खेती री रणनीति तैयार करें, ताकि कही कि फसल उत्पादन और आय ने सुरक्षित राखी सके।
0: सही बात है। और देखो सर, सबों पहली बात करा किसाना ने मौसम री जानकारी पर विशेष ध्यान देना चाहवे। आजकल जो है मौसम विभाग द्वारा मोबाइल ऐप, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यमों मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध करायो जा रियो है। समय पर मौसम री जानकारी प्राप्त करें किसान भाई जो है अपने बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कटाई जैसा कार्य ने उचित योजना वनयन कर सके सा।
1: बिल्कुल, फसल चयन भी बदलता था मौसम में जरूरी भूमिका निभावे।
0: हाँ
1: किसान
0: हाँ
1: भाई ने अपने क्षेत्र की जलवायु मिट्टी के अनुसार ऐसी फसल और उन्नत किस्म चुननी चाहे, ताकि कहिए कि चाहे हुको वो अधिक ज्यादा वर्षा वे या तापमान परिवर्तन ने भी सहन कर सके, कम अवधि में पाकवा वाली किस्म और चयन भी जोखिम ने कम करवा में सहायक वे सके
0: सही
1: है।
0: बात है। और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी तकनीक का उपयोग करें पानी की बचत की दी जा सके। अन्य सूखा स्थिति में भी फसलारी आप ही कह सका कि आवश्यक नमी मिलती रहेगा और उत्पादन जो है प्रभावित नहीं वेगा सा।
1: बिल्कुल, और मिट्टी स्वास्थ्य और संरक्षण भी बहुत जरूरी है। जैविक खाद, गोबरी खाद, हरी खाद और फसल अवशेष और उपयोग मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता ने तो बढ़ावे। लाल लारे देखो, स्वस्थ मिट्टी मौसम रे प्रतिकूल जो है प्रभाव ने बेहतर ढंगू सहन कर सके। फसला रे विविधीकरण भी अणि महीने एक

0: देखो प्रभावी रणनीति वे
1: हाँ
0: एक ही फसल
1: हाँ
0: पे निर्भर रहवा रे बजाय देखो नरी सारी फसला उगई ने वणा रे जोखिम ने भी कम कर सके है।
1: सही बात
0: और
1: है सा।
0: किसान भाई देखो एक फसल रो नुकसान अगर वे जाए तो दूसरी फसल रो अपनी आय ने वणायो राख सके।
1: सही बात है। देखो सर जेते बात करा कृषि रे साथ साथ पशुपालन बागवानी मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां भी अपने किसान भाई ने अतिरिक्त आय रो स्रोत वणाई सके सा। और देखो सा हते हते बात करा कीट और रोग प्रबंधन पर भी अपने किसान भाई ने विशेष ध्यान देना चाहे क्योंकि बदलता मौसम रे कारण नया कीट और रोग तेजी फैल सके। नियमित निरीक्षण जैविक उपाय और समय आप ही कैसे का समय के कीट प्रबंधन तकनीक का उपयोग करें फसल ने सुरक्षित आप ही राख सका सा।
0: बिल्कुल। और देखो सरकार द्वारा नरी सारी फसल बीमा योजना रो भी ला चाल रही जी योजना है बना भी फसल बीमा योजना रो भी किसान भाई लाभ उठाई सके। फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं वेवा वाला आर्थिक नुकसान की भरपाई करवा में मदद तो करे और किसान भाई ने सुरक्षा भी देवे है सा।
1: सही बात है। और देखो सा हाथे हाथे अनिता भाई सा बात करा कि बदलता मौसम री परिस्थितियां में सफल खेती रे लिए वैज्ञानिक सोच आधुनिक तकनीक का उपयोग जल संरक्षण फसल विविधीकरण और मौसम की जानकारी रो सही उपयोग आवश्यक है। अगर किसान भाई समय के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करेगा और तो भी मौसम की चुनौतियों का सामना करते तक बेहतर उत्पादन और अधिक आय ने प्राप्त आसानियों कर सकेगा सा।
0: बिल्कुल भावना वैसा। देखो भाई किसान भैया ने बदलता तक मौसम महीने खेती महीने कई कई रणनीतियां अपनावनी चाहे आना वातारो ध्यान रखेगा तो देखो फसल उत्पादन बेहतर वेगा सा। कार्यक्रम में देखो और भी बातचीत जानकारी करांगा लेकिन आपको तो हुना एक राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सा हुना नहीं मन भावन राजस्थानी लोकगीत।

0: हाँ तो अनीता भाई सा देखो सा यो तो सुनियो आप ही मन भवन राजस्थानी लोकगीत
1: हाँ
0: और
1: सा
0: देखो सा जानकारी रे सिलसिला ने दा आटे से विराम और घड़ी रे आड़ी नारा तो आपने चाल वारो टेम वीडियो और आप ही अपने किसान भाई आगे ला सा
1: तो चाला सा राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। अब सुनिएगा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने आज राजधानी विक्टोरिया में आपसी सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। सेशल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। सेशल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना पर हुए समझौते से सेशल्स के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान सोना न खरीदने और विदेशी दौरे न करने की अपील पर सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री

0: सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत हो। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। हमलों में ईरान की निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में 8 अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर फिर से संकट गहरा गया है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। मेसी ने 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल किया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोल की संख्या 19 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। दोपहर की 3:05 हुए हैं। अब हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। हमारी संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम अब हमारे FM लेक सिटी चैनल के श्रोता भी एक साथ सुन सकेंगे।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं शालिनी।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होगा जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे न्यू गैजेट्स में सेगमेंट में, और उसमें जानेंगे फोटो स्टूडियो की आधुनिक तकनीकों के बारे में। साथ ही बात करेंगे सेहतनामा में गामोफोबिया और ग्लोसोफोबिया की, और फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी आनंद एल राय और राजीव वर्मा की। साथ ही प्रशांत चंद्र महान लोबिस और पल्लो नजी मिस्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, जसपाल राणा और मरियप्पन थंगा वेलू के बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के महत्व को भी।
0: और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अंत में आज के दिन का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं न्यू गैजेट सेगमेंट से, जिसमें जानेंगे उन आधुनिक उपकरणों के बारे में जो किसी भी फोटो स्टूडियो को प्रोफेशनल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल मोहित, आज के फोटो स्टूडियो में सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि कई स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि DSLR और मिररलेस कैमरा, जो उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा LED स्टूडियो लाइट्स और रिंग लाइट्स भी काफ़ी लोकप्रिय है। ये बेहतर रोशनी प्रदान करते हैं जिससे तस्वीरों में स्पष्टता और आकर्षण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कैमरे को स्थिर रखने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड का भी उपयोग किया जाता है, और वहीं अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड्स देने के लिए बैकड्रॉप स्टैंड और बैकग्राउंड स्क्रीन्स भी स्टूडियो का अहम हिस्सा होता है।
0: बिल्कुल, और आधुनिक स्टूडियो में वायरलेस माइक्रोफोन, लाइट रिफ्लेक्टर्स, सॉफ्ट बॉक लाइट और गिम्बल्स जैसे गैजेट्स का भी उपयोग किया जाता है, जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी को और बेटर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही तस्वीरों और वीडियो की एडिटिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया और प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं।
0: यानी दोस्तों, कैमरा, लाइटिंग, बैकग्राउंड और एडिटिंग इक्विपमेंट का सही कॉम्बिनेशन ही एक साधारण जगह को प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो में बदल सकता है।
1: और यही आधुनिक गैजेट्स आज फोटोग्राफी

और कंटेंट क्रिएशन की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। तो आज इसी के साथ आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में बस इतना ही।

0: कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहित, इनमें पहला है गामोफोबिया, यानी कि शादी या किसी गंभीर रिश्ते में बंधने का डर, और दूसरा है ग्लोसोफोबिया, यानी कि लोगों के सामने बोलने का डर।
0: बिल्कुल शालिनी, सबसे पहले बात करते हैं गामोफोबिया की। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शादी या किसी गंभीर रिश्ते की जिम्मेदारियों का अत्यधिक डर महसूस होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ये डर सिर्फ शादी से नहीं बल्कि उससे जुड़ी जिम्मेदारियों, भविष्य की चिंताओं या रिश्ता टूटने के डर से भी हो सकता है। कई बार बचपन के अनुभव हो गए, परिवार में हुए विवाद या फिर किसी पुराने रिश्ते की नाकामी भी इसका कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल, और ऐसे लोगों के मन में अक्सर यह सवाल चलता है कि क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा या अगर कुछ गलत हो गया तो, और यही सोच धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं ग्लोसोफोबिया की। ये है कि लोगों के सामने बोलने का डर, इसी को हम कहते हैं ग्लोसोफोबिया। कई लोगों को मंच पर बोलने, भाषण देने या मीटिंग में अपनी बात रखने के से पहले भी घबराहट होने लगती है, उन्हें दिक्कत आती है।
0: बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, पसीना आने लगता है या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यही ग्लोसोफोबिया के सामान्य लक्षण हैं।
1: बिल्कुल मोहित, और दिलचस्प बात तो ये है कि ये समस्या सिर्फ नए छात्रों या नए लोगों से मिलने से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी हो गए, कलाकार हो गए और पेशेवर लोग भी कभी कभी इसका सामना करते हैं।
0: बिल्कुल, और विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार अभ्यास, आत्मविश्वास बढ़ने वाली गतिविधियाँ, छोटे समूहों में बोलने की आदत और सकारात्मक सोच इस डर को काफी हद तक कम कर सकती है।
1: और वहीं ग्लोसोफोबिया से बाहर निकलने के लिए अपने डर को समझना, परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करना और ज़रूरत पड़ने पर किसी काउंसलर की मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और डर होना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वही डर हमारे फैसलों और सपनों पर हावी होने लगे तो उसे पहचानना और उससे बाहर निकलने की कोशिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसी के साथ यही था आज का हमारा सेहतनामा। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और जीवन में आत्मविश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें।

0: दोस्तों बढ़ते हैं फिल्मी दुनिया की ओर, जहां बात होगी हिंदी सिनेमा की दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई।
1: बिल्कुल मोहित, एक है संवेदनशील और अनोखी कहानियों के लिए मशहूर फिल्म निर्देशक आनंद एल राय और दूसरे हैं फिल्मों और टेलीविजन के अनुभवी अभिनेता राजीव वर्मा। और खास बात यह है कि आज इन दोनों ही हस्तियों का जन्मदिन है।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं आनंद एल राय की। दिल्ली में जन्मे आनंद ने अपने करियर की शुरुआत इंजीनियर के रूप में की, लेकिन उनका मन रचनात्मक दुनिया में था और यही वजह रही कि वे मुंबई पहुंचे और टेलीविजन से होते हुए फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा।
1: बिल्कुल दोस्तों, आनंद एल राय को असली पहचान साल 2011 में आई फिल्म तनुवेट्स मनु से मिली। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रांझना, तनुवेट्स मनु रिटर्न, अतरंगी रे और रक्षाबंधन जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने रिश्तों, भावनाओं और आम लोगों की कहानियों को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से पेश किया।
0: इतना ही नहीं, उन्होंने कलर येलो प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना भी की, जिसके बैनर तले शुभ मंगल, सावधान, मुक्काबाज और हसीन दिलरुबा जैसी चर्चित फिल्में बनी। उनकी फिल्मों की खासियत होती थी छोटे शहरों की कहानियां और उनसे जुड़ी वास्तविक किरदार।
1: बिल्कुल, और इसके बाद रांझना और तनुवेट्स मनु रिटर्न जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान को और मजबूत किया। खास बात यह है कि रांझना और तनुवेट्स मनु रिटर्न के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी नामांकन मिला।
0: अब बात करते हैं अभिनेता राजीव वर्मा की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जन्मे राजीव वर्मा पेशे से आर्किटेक्ट भी रहे। उन्होंने वास्तुकला और शहरी डिजाइन की पढ़ाई की, लेकिन अभिनय के प्रति उनका लगाव उन्हें फिल्म और टीवी की दुनिया में ले आया।
1: बिल्कुल दोस्तों, राजीव वर्मा को दर्शक खास तौर पर परिवार प्रधान फिल्मों में निभाए गए उनके सशक्त किरदारों के लिए याद करते हैं। मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, कोई मिल गया, चलते चलते, क्या कहना और बीवी नंबर वन जैसी फिल्मों में उन्होंने पिता और परिवार के मुखिया की भूमिकाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया।
0: तो दोस्तों, एक और आनंद एल राय अपनी संवेदनशील कहानियों और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, वहीं राजीव वर्मा अपने सहज और प्रभावशाली अभिनय के लिए दर्शकों के दिल में खास जगह रखते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ आनंद एल राय और राजीव वर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब याद करेंगे दो ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर देश और दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान बनाई।
1: बिल्कुल मोहित, एक है भारत के सांख्यिकी विज्ञान के जनक प्रशांत चंद्र महाल नोबिस और दूसरे हैं उद्योग जगत के दिग्गज

0: और पालो नजी समूह के प्रमुख पल्लो नजी मिस्त्री, और आज दोनों की ही पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल शालिनी, शुरुआत करते हैं प्रशांत चंद्र महाल नोबिस से। उनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री थे।
0: उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की स्थापना की और देश में बड़े स्तर के सैंपल सर्वेक्षणों की शुरुआत की। सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा विकसित महाल नोबिस डिस्टेंस आज भी पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने देश की आर्थिक योजनाओं और विकास मॉडल को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1968 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा वो रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी रहे। उनकी स्मृति में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। महाल नोबिस का निधन 28 जून 1972 को हुआ, लेकिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी देश के विकास की मजबूत नींव माना जाता है।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं

0: रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी रहे। उनकी स्मृति में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। महल नोबिस का निधन 28 जून 1972 को हुआ, लेकिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी देश के विकास की मजबूत नींव माना जाता है।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं पल्लोन जी मिस्त्री की। उनका जन्म 1 जून 1929 को मुंबई में हुआ था। वे शाहपुर जी पल्लोन जी समूह के अध्यक्ष रहे और भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारकों में भी शामिल रहे।
0: बिल्कुल, और पल्लोन जी मिस्त्री को उनकी सादगी और शांत नेतृत्व शैली के कारण फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस भी कहा जाता है। और उनके नेतृत्व में शाहपुर जी पल्लोन जी समूह ने निर्माण, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक पहचान भी बनाई। साल 2016 में भारत सरकार ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।
1: बिल्कुल, और उनके परिवार का भारत के औद्योगिक इतिहास में भी विशेष स्थान रहा है। उनके पुत्र साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे। पल्लोन जी मिस्त्री का निधन 28 जून 2022 को 93 वर्ष की उम्र में हुआ।
0: तो हम कह सकते हैं कि प्रशांत चंद्र महल नोबिस और पल्लोन जी मिस्त्री दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने ज्ञान, शोध, उद्योग और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसी के साथ इन दोनों महान विभूतियों को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: करते हैं भारत के एक ऐसे नेता की जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकालकर नई दिशा दी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की, जिनकी आज जयंती है।
1: बिल्कुल मोहित, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, वकील, विद्वान और भारतीय राजनीति के दूरदर्शी नेता थे। वे भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री भी रहे
0: और उन्होंने 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। आर्थिक संकट के दौर में उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी।
1: और इन्हीं सुधारों के कारण उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में विदेशी निवेश बढ़ा और व्यापार नियम सरल हुए और साथ ही साथ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक मजबूती से भी जुड़ा।
0: राजनीति में आने से पहले वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा रक्षा, गृह और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी संभाली। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत की लोक इष्ट पॉलिसी की शुरुआत की।
1: बिल्कुल, और वे केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी रहे। तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी जैसे लगभग 17 भाषाओं के ज्ञाता राव को साहित्य, अनुवाद और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी विशेष रुचि थी।
0: बिल्कुल, और 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया, लेकिन भारत के आर्थिक विकास और आधुनिक राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।
1: बिल्कुल, और इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। तो इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धापूर्वक नमन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करेंगे खेल जगत की दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने संघर्ष, प्रतिभा और मेहनत के दम पर भारत का नाम विश्वभर में रोशन किया।
4: बिल्कुल मोहित, एक है भारत के महान निशानेबाज जसपाल राणा और दूसरे हैं पैरालंपिक हाई जंप स्टार मरियप्पन थलांगवेलू, और दोनों का ही आज जन्मदिन है।
3: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं जसपाल राणा की, जिनका जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के गढ़वाली परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और 1994 में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाया।
4: बिल्कुल, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने केवल खिलाड़ी के रूप में ही नहीं बल्कि कोच के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की सफलता में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा।
3: बिल्कुल, और जसपाल राणा भारत के सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम खिलाड़ियों में भी गिने जाते हैं। उन्होंने 4 कॉमनवेल्थ गेम में कुल 15 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते, देश का मान बढ़ाया है।
4: बिल्कुल, और अब बात करते हैं भारत के पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन थंगावेलू की, जिनका जन्म 28 जून 1995 को तमिलनाडु के सलेम जिले में हुआ। बचपन में एक सड़क दुर्घटना में उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से प्रभावित हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने साहस से नई मिसाल कायम की।
3: बिल्कुल, और उन्होंने रिको पैरालंपी 2016 में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद टोक्यो पैरालंपी 2020 में रजत और पेरिस पैरालंपी 2024 में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने लगातार 3 पैरालंपी में भारत को पदक दिलाने का गौरव भी हासिल किया।
4: और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका जीवन संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है।
3: तो दोस्तों, इसी के साथ निशानाबाजी के महान सितारे जसपाल राणा और पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, बात करते हैं कैसे जागरूकता दिवस की, जो हमारी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है। दोस्तों, आज 28 जून को मनाया जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे।
1: बिल्कुल, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अपनी बीमा पॉलिसी की समीक्षा करने, कवरेज की जांच करने और ज़रूरत के अनुसार उन्हें अपडेट रखने के लिए प्रेरित करना है। इसका संदेश है, बीमा तभी प्रभावी है जब वो अपनी वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप हो।
0: दोस्तों, कई लोग घर, वाहन, स्वास्थ्य या जीवन बीमा लेने के बाद वर्षों तक उसकी समीक्षा नहीं कराते, जबकि महंगाई, परिवार में बदलाव, विवाह या बच्चों की शिक्षा जैसी जिम्मेदारियां बीमा ज़रूरतों को बदल सकती है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि यह दिवस लोगों को अपने बीमा दस्तावेज़ों को व्यवस्थित रखने, कवरेज लिमिट और लाभार्थी जानकारी अपडेट करने और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए प्रेरित करता है।
0: दोस्तों, बीमा का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है। आधुनिक संपत्ति बीमा की शुरुआत 1666 में लंदन की भीषण आग के बाद मानी जाती है। आज बीमा जीवन, स्वास्थ्य, घर, वाहन और व्यवसाय सहित कई क्षेत्रों में सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हमें ये याद दिलाता है कि भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सही और पर्याप्त बीमा सुरक्षा बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल शालिनी, और इसीलिए आज का दिन अपने बीमा कवरेज की समीक्षा

0: दोस्तों, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि 28 जून के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई।
1: बिल्कुल मोहित, साल 1919 में आज ही के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके साथ प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था।
0: बात करें साल 1926 की, तो आज ही के दिन प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज का गठन हुआ था, जब डेमलर और बेंज कंपनी का विलय हुआ।
1: बिल्कुल, और 1997 में मशहूर मुक्केबाज माइक टाइसन ने हैवीवेट मुकाबले के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी इवांडर होलीफील्ड का कान काट लिया था। ये घटना खेल इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है।
0: बिल्कुल, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। 1981 में आज के दिन भारत ने अपना पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
1: और वर्ष 2004 में अमेरिका ने इराक की अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरित की थी, जो इराक युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था।
0: तो दोस्तों, ये थी 28 जून से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं।
1: तो चलिए अब देते हैं कुछ स्पोर्ट अपडेट। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स में आज शाम 7 बजे खेला जाना है।
0: तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इस सॉन्ग के साथ अब लेंगे आपसे विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थी
1: शालिनी। नमस्कार।

0: युवा साथी भी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में

0: टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है इस सुहानी शाम में फिल्म संगीत। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं तुम मिले फिल्म से, संगीत प्रीतम का।

दोस्तों आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। ये गाना जो अभी आपने सुना इसे गाया था नीरज श्रीधर ने। अगला गाना आप सुनेंगे के की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत फिल्म गुप्त, गायक कलाकार कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक। ये गाने आप सुन रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आकाशवाणी उदयपुर से। इसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोता आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अंतिम गाना आपके रेडियो सेट पर आने से पहले आपको बता दें, आज शाम 7 बजे से हम रिले करेंगे ICC वीमेंस T20

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण। तो ये रिले हमारा ज़रूर सुनिएगा। और अब फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपके रेडियो सेट पर। फिल्म शराबी गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार, गीतकार अनजान।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही समाप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 66.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद आकाशवाणी दिल्ली से आज शाम 7 हम रिले करेंगे ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण। हमारे AIR ऐप पर फिल्म संगीत का प्रसारण जारी रहेगा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
2: इस समय शाम के 6:29 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने AI टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की

0: अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देशभर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
2: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाएं। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, अमलातस, कुमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया।

0: गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश सहित देशभर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले 2 दिन अब स्वास्थ्यकर्मी आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिनभर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए।

0: कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं। दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाय विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माय गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माय भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण में राज्यां रे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश में 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59032 बूथा माथे 5 साल तहरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कयो के जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वरना कयो के आज देश में रोजगार रा मौका बद रिया है और आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प मजबूत वे रियो है।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जो इस बार वो आयोजन 2832 ठोड़ा माथे भी हो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लारला दिना आथूणी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन सहयोग सारू आभारी जतायो।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से

0: कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी मारी सरकार का न्यू सरोग करी जी नुवी सामाजिक हिफाजती योजनामा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्रो करता योजना री प्रगति और इनरा फायदा री जानकारी दूजा लोगा तई साझा करन री अरज करी। श्री मोदी एआईए टूल्स ने देश री संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषावा रा संरक्षण रा काम में लिया जावण माथे न्यारी नारी शैक्षणिक संस्थावां ने शुभकामनावां दी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान रे तहत देश रा कई हलका माए गावां ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा री कोशिशां रो जिक्रो करियो। वणा आवता महीना माए गणेश उत्सव री तैयारियां माए लाग्या मूर्तिकारां माटियू बनी मूर्तियां बनावण और खरीदारां प्लास्टरो पेरिसू बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनण ने लेर प्रदेश माए लोगां माए खासो उमाव नजर आयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर माए आपरा रहवास माते सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चुनी जा उम्मीदवारों रे साथे ओ कार्यक्रम सुनियो। श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री रा संबोधन आम जन ने देश में वेरिया सामाजिक सरोकारों जुड़िया नवाचारों री जानकारी और उनने अपनावण री सीख मिले है। पाली बाड़मेर जैसलमेर समेत न्यारा न्यारा ठोडा माथे मन की बात कार्यक्रम ने भेड़ा सुनी जा ई दौरान जन नुमाइंदा और आम लोग मौजूद रिया। गांववाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण माए गांवारी महत्व भूमिका बताई है। वे आज नई दिल्ली में वीआर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बोल रहा हा। श्री चौहान कहो कि गांववाई विकास में तेजी लावण सारू विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्य रा योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपयाओं बत्ती रो बंदोबस्त करी जो है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा रा पचपदरा माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा तय दौरा ने लेर रिफाइनरी ने देखा। श्री शर्मा कार्यक्रम री तैयारियां ने लेर एहलकारा ने लेर मीटिंग कर रिया है। इनो पहला मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट रा नुआ टर्मिनल भवन रोही जाए जो लियो। ई दौरान वना मीडिया साथे बतलमाए कहो कि प्रधानमंत्री आवता 4 जुलाई ने ई नुआ टर्मिनल रो लोकार्पण करेला। मुख्यमंत्री रे साथे ही ई दौरान जन नुमाइंदा और जिला प्रशासन रा एहलकार मौजूद रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने तय बालोतरा दौरा री तैयारियां ने तहत जिला माए 7 दिन रो खास स्वच्छता अभियान शुरू हुई हो। अभियान रा पहला दिन आज प्रभारी मंत्री जोरा राम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी समेत जन नुमाइंदा और महकमाई एहलकारा झाड़ू लगार सफाई रे प्रति जाग जगाउण रो संदेश दियो। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया री कामयाब बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम में गिनी जावे है। अबार माय अठे बाघा री तादाद बदने 56 वेगी है। आज अलवर रा सरिस्का माय बाघ पुनर्स्थापना अवसर और चुनौतियां मुद्दा माथे राष्ट्रीय कार्यशाला माय बोलता श्री यादव कहो कि आ कार्यशाला उन भगत भी है जदे सरिस्का माय बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा कर लिया है। श्री यादव कहो कि बाघ संरक्षण माय राज्य रा अनुभवारी अदला बदली भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। कार्यशाला माय वन मंत्री संजय शर्मा और देश भर रा बाघ संरक्षण विशेषज्ञ वैज्ञानिक वन अहलकार और न्यारा न्यारा राज्य रा प्रधान वन जीव प्रतिपालक मौजूद रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता रो लगा सरकारी कोशिशां रे साथे जन भागीदारी में पूरो वह सके है। श्री बिरला आज कोटा रा दादाबाड़ी हलकारा रेंडल पार्क माय विया पौधरोपण कार्यक्रम माय बोल रिया हा। वणा कहो कि जे हर रहवासी आपरा घर गली बगीचा और मोहल्ला ने साफ राखण रे साथे पौधरोपण और उनरा संरक्षण रो संकल्प लेवे तो कोटा सब

0: ऊ साफ और हरिया भरिया शहरा माए आपरी न्यारी पिछाण बना सके है। वना लोगों पर्यावरण मुजब जीवन चर्या अपनावण और पौधरोपण ने जन आंदोलन बनावण री अरजी करी।
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाए। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुरूप दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर गली गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष रेंडल पार्क माए मुहैया खेल सुविधाओं रो जायजो लियो वना कहो के आवन वाला भगत माए कोटा माए आधुनिक खेल सुविधाओं रो पसारो कर उजायला। राजस्थान समेत देश भर माए आज तीन दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत हुई। इनरे तहत देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण सारू 5 साल तय रा सगड़ा टाबरा ने पोलियो रोधी खुराक पिलाई जावे। प्रदेश में 1,32,00,000 टाबरा ने दवा पिलाउन रो लगस राखी जो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आपरा रहवास माते टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलार अभियान री शुरुआत करी। प्रदेश में 59,032 बूथा माते पहले दिन आ दवा पिलाई जी। आता 2 दिन अबे स्वास्थ्य कर्मी पोलियो री दवा पीवणु बछोड़ा टाबरा ने घर घर जा आ दवा पिलावेला। ध्यान जोग है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत करी जी ही। लाडला 15 साल में देश भर में कोई पोलियो रो नू के सामी नहीं आयो है। 27 मार्च 2014 ने भारत ने पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पानो मिल चुको है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली ने बधावो देवण सारू नौजवाना माए जाग बदरी है। ई कड़ी माए पाली जिला सुमेरपुर माए मानसून आवणु पहला नौजवान घनी तादाद माए सीड बॉल्स तैयार कर रिया है। और ब्यूरो मारा खबर नवीसू।
2: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देसी प्रजातियों जामुन अमलातस उमटा खेर देसी बबुल गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी आकाशवाणी समाचार पाली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां माए फेरों कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान माए उतार चढ़ाव रो सिलसिलो चाले। राजधानी जयपुर समेत कई जिला माए करड़ी गर्मी और उमसू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। उठीने चूरू माए आखे दिन करड़ी गर्मी रे पछे आज सिंजा बिरखावी जिणु लोगों ने थोड़ो आराम मिलियो। वठे सिरोई और आबूराज माए आखे दिन बादल छाए जा रिया। मौसम केंद्र जयपुर जुलाई रा पहला हफ्ता माए प्रदेश रा कुछ थोड़ा प्री मानसूनरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती माथे राष्ट्र आज वाने श्रद्धांजलि अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक माए दुनिया माए संकट और मंदिरा दौर माए भारत ने हिफाजती बारे राखण सारू कुशल प्रशासक रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माए खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महताऊ बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माते 5 साल तय रा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इनके साथ ही प्रदेश के समाचार और बुलेटिन अठे पूरो यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करो जायला। नमस्कार।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

लगे हम फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप कांपने लगे तुम कांपने लगे हम फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप फ्रीक्वेंसी

चाय में चीनी कम, निशक्त पीते रहे चाय में चीनी कम। कांपने लगे तुम, कांपने लगे हम, फ्रीक्वेंसी मिले तो आ गया भूकंप। कांपने लगे तुम, कांपने लगे हम, फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप।

दफनाते और पालते रहे भ्रम, सच को रहे दफनाते और पालते रहे भ्रम। कांपने लगे तुम, कांपने लगे हम, फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप। कांपने लगे तुम, कांपने लगे हम, फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप। फ्रीक्वेंसी मिली तो आ गया भूकंप।

0: बोलो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन,
0: शाबाश, आगे आगे।
1: बिन बदरावर से सावन,
0: शाबाश, चलो आगे आगे आगे बढ़ो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
0: फिर से चलो।

सूखा ही रंग डालो, इतना ना खर्च करो, माछेर झोल के लिए बचाओ पानी।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: लिया लिया ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल।
1: वाह वाह वाह वाह
0: धन्यवाद।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे T20 वर्ल्ड कप। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर

0: कर्मी पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute